Κοσμίτα, ντρουμάτα λεσόπιλη. Σου χασινή, σου ματουρα μάχινη.

निरीक्षक 8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज गुरुवार है, सख्त संवत 1948 के आषाढ़ माह की

0: दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली,
1: गालों की ये लाली, गालों की ये लाली,
0: दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, बन बैठा दिल में।

0: शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं,
1: शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं,
0: जल जाए चाहे शमा को चूमते हैं, किसी सरफिरे का

काली चोटी है परांदा तेरा लाल है गोरी, अब तुझे देख देख हुआ।

0: नहीं समझ रहे हो कि जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
0: गुटी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: मेरे साथ शादियाँ मेहरबानी
1: the drop.

0: वो नहीं आने वाले, वाले। वो शलावादी
1: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दिन के 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
3: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
3: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
3: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
3: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
3: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
3: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
3: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
3: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
3: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
3: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोज पत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
3: अजीत जी, भोज या भूज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोता, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोज पत्रों पर लिखे मिलते हैं।
3: तो श्रोताओ, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओ, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
3: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
3: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
3: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
3: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
1: जी।
3: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
3: जी।
1: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
3: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
3: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
1: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
3: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
3: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन।
4: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
5: नमस्कार।
4: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
4: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
4: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
4: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
4: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
4: जी,
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
6: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
4: जी,
6: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
4: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
6: जी,
4: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
4: जी।
6: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
4: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
6: जी
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
4: जी,
5: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
6: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
4: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
6: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
4: अच्छा
6: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
4: डॉक्टर नमिता
5: जी,
4: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
5: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
6: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
5: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
6: जी,
5: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
4: अच्छा,
5: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
4: बहुत सुंदर उदाहरण भैया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों?
6: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
5: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
4: बिल्कुल,
5: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
6: जी,
5: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
4: बिल्कुल,
5: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
6: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
4: जी,
6: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
4: जी,
6: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
4: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
5: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
4: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
6: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
5: बिल्कुल,
6: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
6: जी,
5: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
4: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं
5: साथियों।

0: समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
1: जी बिल्कुल।
2: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूंगा।
1: जी,
2: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
1: जी,
0: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
3: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
1: जी,
3: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
5: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।
6: शिक्षक वे जो बचपन से

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने अपने किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश, अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी जी जी,
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं। हम जानते हैं
3: पानी का

0: जी पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी, पानी
3: पानी
2: कुओं
3: कुओं
2: नदियों
3: नदियों
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम आपने अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी
1: चलो
2: जी
1: ठीक से बैठो, पीछे हो जाओ, बोलो।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: एकम पांच दूनी दस।
6: नमस्ते
7: नमस्ते नमस्ते बच्चों नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
7: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
8: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
7: अच्छा
8: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
7: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
7: हाँ ये भी ठीक है।
9: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
7: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
8: मास्टर जी
7: हाँ हाँ बोलो।
8: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
7: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी
7: मास्टर। लिखो फिर सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
10: दीदी बोलो। मालती
11: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
10: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
11: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
10: ठीक।
11: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
10: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
11: जी।
10: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
11: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
10: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की यह शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
6: नमस्ते दीदी।
12: नमस्ते
6: दीदी।
13: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते
10: दीदी। ये अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
9: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
10: अच्छा
9: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
10: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
8: गुलाब।
10: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
6: दीदी मैं बताऊँगी।
10: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
8: गुलाब। गेंदा।
10: हाँ
8: चमेली। और
10: हाँ
8: चमेली।
10: चमेली।
8: सूरजमुखी।
10: सूरजमुखी, शाबाश।
4: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
10: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
4: जी।
10: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण,

0: में दिखे पौधों के नाम लिखता है। एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
1: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।
2: उज्ज्वल जीवन के शोध है ये,
3: अज्ञानी नहीं अबोध है ये।
2: उज्ज्वल जीवन के शोध है ये,
3: अज्ञानी नहीं अबोध है ये।
2: ये सब बच्चे मतिमान सदा गति

0: शिक्षक कर्तव्य निभाए। हर बालक में शिक्षक यो रुचि दिखलावे,
1: उनकी हर बात सुने समझे सुलझावे।
0: हर बालक में शिक्षक यो रुचि दिखलावे,
1: उनकी हर बात सुने समझे सुलझावे।
0: ये है प्रतिभा की खान, इन्हें दे मान सुपद पर लाए, इनमें विश्वास जगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओ आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी को सुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: चैनल है। दिन का एक बजने वाला है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में बदलती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है, जिससे संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री जालंधर भी जाएंगे, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें राजस्थान के भी कुछ स्टेशन शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल शासन सचिवालय में गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित फील्ड दौरे और अपराधों की निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने जिलेवार होने वाले अपराधों में होने वाली बढ़ोतरी और कमी की रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत करने को कहा। राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत पिछले 9 महीनों में 7,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2025 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के गठन के बाद नशे के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। इस दौरान करीब 692 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए और 30 अवैध MD ड्रग फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध खेती के विरुद्ध 17 विशेष अभियान चलाए गए। सरकार का कहना है कि AI, मजबूत सूचना तंत्र और विशेष टीमों की मदद से नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। नशे की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता और तस्करी से जुड़ी गोपनीय सूचना के लिए मानस हेल्पलाइन 1933 भी संचालित की जा रही है। सवाई माधोपुर के रणथंबोर बाघ परियोजना क्षेत्र में इन दिनों बाघों और अन्य वन्य जीवों की गणना की जा रही है। ये काम फोटो ट्रैप कैमरा पद्धति से किया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार गणना के लिए बाघ परियोजना क्षेत्र में 300 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां 600 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से बाघों और अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। गणना का उद्देश्य बाघों की संख्या का आकलन करने के साथ साथ उनके आवास और वन्य जीव संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करना भी है। जयपुर में कल रोजगार सहायता शिविर लगाया जाएगा। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से लगाए जाने वाले इस शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के करीब 55 निजी कंपनियां भाग लेंगी और 3,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का प्राथमिक चयन करेंगी। शिविर में निर्माण, होटल, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, ई कॉमर्स, रिटेल और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे चित्रकूट स्थित श्री प्रताप स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिविर में 10वीं-12वीं स्नातक, ITI डिप्लोमा, नर्सिंग और अन्य योग्यताओं वाले अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ भाग ले सकेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। सबसे अधिक 33 मिलीमीटर बारिश श्रीगंगानगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर ही प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। जैसलमेर में 39 डिग्री और बीकानेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। विभाग ने कल जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के 13 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसके साथ ही हमारा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी के समय का गोल्डन

पणियार कार्यक्रम सुणणारे सगळी सख्या नो रेडिओ सखेत येणारा घणा घणा रोम रोम. तो बहनो हाणे जेको आहे अपर हमे सावण लॻण आयो आहे और अपो बि जेको आहे बाद जो आहे पढ़िया कि मेघ कद अपरे आसमान में छाप है और एक अच्छी सी बरसात करते हैं. पर बरसातों तो होते हैं पर उए सो पहले जो है अपन भी थोड़ी बहुत तैयारी रख रखाओ कर लेना चाहिए कि अपरे जो घर है उए रमाए अगर छतों में थे कचरो और हो तो अपन देखो घनी बार पानी जो है छत तू रेतन लग जावे तो इस वास्ते ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप छत जो है वो एकदम साफ सफाई रहे वो मत नाली रहे आगे कोई प्रकार कचरो नहीं हुए ताकि जब वर्षा जल आवे तो वर्षा जल जो है आसानी से नाली से निकल भी जावे. और हमें जो है पानी भी किल्लत न देखते हुए अपनों जो पुराना घर है वो में तो आप देखते हैं ताकि बड़ी बड़ी नालियाँ होती जिसके ना आप खाली हो गए था वे तो पानी भेड़ो हो के आम तो पहले छतरी सफाई हो जाती है और पच्चे हुए पानी ना बाल्टी से भर के या टोके में घटती हो जाती तो हमें तो जो दपोरा इस

घर बने तो वे रमोय एडी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि पर छत रोज को साफ पानी है वो पाइप रे जरिए सीधो पर टोके में आवे, क्योंकि वर्षा जल रोज को पानी है वो सबसे साफ सुथरो भी होया करे। तो वे वास्ते जरूरी है कि अपरी जो छतो है वो साफ रहे, ताकि अपर नीचे पानी जब एकत्रित हुए तो गंदो नहीं हुए। और दूसरी बात है कि जब बरसात रो मौसम है अपो पर घर नो साफ सुथरो रखो और खिड़की दरवाजों नो भी सही समय में थे ऊंचा पाछी करता रहो, बंद रखो, ताकि वर्षा जल चुको है वो पर मोए घर में भी कोई प्रकार लकड़ी और नो नुकसान नहीं पहुंचावे। और सबसे बड़ी चीज रही कि अपर जो रसोई है वे रमोए सीला नगर के थामती हुए तो अपन उवे रो विशेष ध्यान देवनो चाहिए। तो वर्षाओं को पहले जो है आपके घर ही अगर कारी कुटको भी कराउनो है तो कराए लेवनो चाहिए, ताकि सीलन से भी अपर घर रो बचाव हो जाए। साथ ही साथ जो अपर रसोई है उवे रो ध्यान रखनो और उवे रमाए जो है दालों है मसाला है आटो है, क्योंकि हमें आप देख रहे हैं कि पहले तो अपन हर चीज को है धान है गेहूँ बारह मात्रा बुरा लिया जानता था, मूंग भी लिया जानता था, और अपन भी घर गृहस्थी ले बैठा हूँ तो यह तो कुनी कि अपन एक एक महीने रोज सामान लेते हैं। घनी बार हुई कि अपन भी अगर कोई चीज अपन सही भाव में मिले तो अपन लेके रख भी लेते हैं। तो यह सब चीजों रो भी अपन भली तरीके से जो है रख रखाव करना चाहिए, ताकि मुँह में भी जीव कीट बीजा नहीं पड़े। जो आप देखो अपरो धान है वह में मूंग अगर साबुत है तो मूंग में आप देखो है कि बहुत जल्दी घुण लग जावे और पूरे मूंग ना खराब कर देवे। तो वास्ते बहुत जरूरी है कि आप वे ना जो है ये देखो जितो भी धान है गेहूँ है मूंग है चाहे चना है यह सब चीजों ना जो आप निकालें तो यहाँ में हल्की सी धूल भी रहा करे, क्योंकि मिट्टी तो अपन यहाँ निकाल दे तो यहाँ में थोड़ी थोड़ी मिट्टी सब में होगी। तो मिट्टी और कखोरे समेत ही अपन यहाँ रखना चाहिए। तो वे वास्ते सब तो बढ़िया है नीम री अपन पत्तों री जो है पत्तियों ने सुखाए के वरी पत्तियों ने डालियों से निकाल के और कागज रे मथे वो पत्तियों बिछाए के और मूंग है चना है चाहे गेहूँ है यहाँ ना रख दें और खाली कागज और पत्तियों ना रख के आपको गेहूँ तो रख दीजिए तो पूरा खराब होने ना, लेकिन मूंग और चना में फिर भी दिक्कत रहेगी। तो मेरे वास्ते है कि धूल जो हुई वो और पत्तियों ना मिक्स करके धूल रे बेड़ा अगर आप रख दें चना ना तो पर जो चना है वो खराब होने हुए, क्योंकि वे सूए में जो सीलन हुए वे ना धूल जो है वो सोख लिया करे और पच्चे जिके टाइम करना हुए बेटे मनो चाल नहीं तो छोड़ के आपको कॉम ले सको, क्योंकि धूड़ तो सीधी निकल जाए। मूंगर हमारे अगर आप धूड़ की जगह राख देता हूँ तो वेरे वास्ते बहुत ही फायदेमंद रहे और वे सूर हमारे कोई प्रकार जीव को नहीं लगे और आप देख सो कि अपरा मूंग जो है वो साल भर तक खराब भी खुनी हुए। चने रमोए कुछ लोग अरंडी रू तेल भी लगाए के रखे वे सुबह कहे कि जीव को नहीं पड़े। इस तरीके से ऊपर है मसालों रे भी रख रखा हुआ है। तो बहनों बरसात से बचाव रे वास्ते तो अपनो कितना सारा प्रयास पहले से करना पड़े। तो बहनों पर बातचीत और चर्चा तो जारी रखो, पर बातों करते करते अपन एक ही तरह की बातों मुझे अगर बात करता रहे तो थोड़ी सी नीरसता आ जाए। तो ये नीरसता ना दूर करने वास्ते बहुत जरूरी है कि आपको हेलो गीत संगीत दुनिया में और बहनों करवाओ मनोरंजन ये प्यारे से लोकगीत के साथ।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: तो बहनों और सुनियो मेरे प्यारे सो, लोकगीत और मेरे बाद में जरूरी संदेश। तो बहनों आप बात कर रहा था कि आप और जिको हमें बरसा रहे मौसम है, तो बरसा रहे मौसम रे मोय जिको है अपन आप रे घर री, आप रे रसोई री और आप रे खुद री भी जिको है देखभाल थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़े। तो आप बात करिए कि आप ड्रोन नौ जो है सही तरीके से रख रखाव करो। साथ ही साथ आपको देखें कि ये मौसम में जो है कीड़ियों है, कीट पतंगा है, ऐसा चीज़ों भी बहुत ज़्यादा रहे। तो आप देखो शक्कर है वे रमाय अगर आप लॉन्ग रखें तो आप देखें कि वे रमाय कीटियों बिल्कुल भी कोने आ गए। तो ये वास्ते अपन शक्कर है मत बॉन्द रमाय थोड़ा से लॉन्ग ऊपर और नीचे रख देना चाहिए जिसके ऊपर बना जिको है चीटियों आवे को नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आप और रसोई में जिको डॉन रखोड़ो है वो रमोए अगर आप समय समय में थे थोड़े थोड़े टाइम में अगर साइड नहीं करता रहो तो भी जिको है वो मैं जिको मेरा सर्दी रात की दौर है वो कोनी लगिया करे। और साथ ही साथ आप और जिको मसाला है उबे रमाए अगर आप लौंग है तेज पत्तू है रख दीजिए तो वैसे भी जो है आप मसाला खराब तो नहीं हुए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पर बहुत ही कॉम भी आया करे। और जिसकी जगह आप मर्तबान और रखोड़ा है वह जगह अगर आप कोने रमाए कपूर रख दीजिए तो वैसे भी कीट पतंगों में कमी आवे और हमें जो है मौसम चौमासे रो है जानों को गीत भी सुनियो कि हमें देखो चार महीना चौमासेरा रह से सावन भादरो अस्तु कत्ते तो यहाँ चार महीना रह मैं जो है अपन थोड़ो से ज़्यादा ध्यान देवन की जरूरत है भी। तो अगर हो सके तो अपन जो कीटनाशक है थोड़ा उगेरो भी प्रयोग करना चाहिए ताकि अपर कीट पतंगा और कम रहे। साथ ही साथ जो है नींबू जब आप निचोए लाएं तो वे जो छिलको बच जाए वे रमाए अगर आप सरसों रो तेल और थोड़ो से कपूर डाल के और वे मैं अगर रुई की बाटी बनाए कि आप शाम के टाइम वे न जगह जाए तो वे सुबह आप देखाएं कि आप खुशबू सो कीट पतंगा मत

ना सोया करे, तो है छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वह ना अपना ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो आप ऊपर घर भी साफ सफाई करी, आप ऊपर रसोई भी साफ सफाई करी, और जो है खावन पीन रू भी ध्यान देना चाहिए अपन, हर चीज़ में धोए धोए के काम लेना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी चीज़ थोड़े थोड़े समय में थे खानी चाहिए, क्योंकि हणो जो मौसम है वह में आप गर्मी के मौसम में ज़्यादा चीज़ खाए उड़ी पचे भी उन्हें, तो ये वास्ते अपन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। समय समय में थे जो है छाछ है और शिकंजी है और ओम पनीर रोज को पानी है यह भी पीनते रहना चाहिए, ताकि अपने शरीर में पानी की कमी भी नहीं हुए। तो यह छोटी छोटी चीज़ें चाय और उपयोग कम से कम करना चाहिए, हो सके तो छोड़ ही जानी चाहिए, और अगर चाय रो है भी तो अपन सुबह सुबह हल्को से थोड़ी सी चाय पत्ती और दालचीनी ना पानी उकाल के अगर वो पी जाए तो अपने वास्ते वो फायदेमंद भी रहा करे। तो वैसे अपर शरीर रोज को इम्यून सिस्टम है वो भी ठीक रहे, थोड़ा से आप शरीर को ध्यान रखो। तो जब बरसात तो मौसम है और हमें जो को मौसम है वो उमंग उत्साह रो त्यौहार है, जो पकड़ो कि सावन रोज महीनों आए जावे तो अपन बहुत ही अच्छो लगे, अपन मन को भी बढ़िया लगे सावन रो महीनों। तो सावन रो महीने में अगर बारिश हुए चारों तरफ हरियाली हुए तो अपर मन भी खुश हो जाए, तो अगर अपर मन खुश है तो अपर तन भी खुश होना चाहिए। तो तन खुश होने वास्ते भी छोटा छोटा से अगर आप उपयोग करो तो आप ऊपर त्वचा मथे भी निखार ला सको। गर्मी ज़्यादा लगे पसीनो ज़्यादा आ गए तो वो वास्ते आप जो है बेसन है वो मैं दही मिक्स करके अगर कोई ना नींबू जो है वो मोरी त्वचा हुए सुजलन और नहीं हुए तो वो भी डाल दिए, और अगर नहीं तो वह ना हटा देवे दही और वे रो मास्क बनाए कि वो लगाए लेवे। और अगर कोई रूखी त्वचा है तो बेसन में थोड़ी सी मलाई डाल के लगाए लेवे, कच्चे दूध तो चेहरे ना आप रोज साफ करो तो आप देखें कि जो है आप चेहरो हमेशा दमक तो रहे। और बालों के वास्ते आप देखें कि रसोई में जब आप पूरे दिन खड़ा रहे तो अपन जो है बालों में भी चिपचिपाहट लगी और धूल भी आए जावे है ना, पर एक तो अंधड़ भी बहुत ज़्यादा है तो वे सोपा ना तकलीफ भी होया करे। तो ये वास्ते जो आंवलो अरीठो शेका काई ये सब चीज़ों ना मिलाए के उमें थोड़ी सी अलसी मेथी किराए तो यह सब चीज़ों डाल के आप घरे ही एक हर्बल शैम्पू बनाए सकते हैं। और थोड़ो से कब देखो चावल बनाए वे मौंड अगर अलग रखना वह मौंड में ये शैम्पू ना और डाल दीजिए, और पच्चीस देखो तो शैम्पू लगा हुए वो थोड़ो से डाल के अगर तो वे तो आप बाल धोसो तो थोड़ा जो बाल है वो भी रेशमी और चमकदार रह से। और चावल रोज को पानी अगर आप थोड़ी देर जो मौंड है उन्होंने अगर आप 15-20 मिनट पहले लगाए कि रख दीजिए तो आप देख सो कि अपर जो कुदरती कंडीशनर है उगे रो कॉम करिया करे। और उमें देखो रीठो है उमें हल्का सी जाग भी हुई तो अपना ज़्यादा शैम्पू रो भी प्रयोग में आप कम मात्रा में कर दें तो ऊपर वास्ते बढ़िया भी रहे, तो बाल भी अपरा स्वस्थ रहे, मेथी दाना भी बालों ना ऊपर मजबूत बनावे। तो ये वास्ते छोटा छोटा से प्रयोग है, आंवले रो सेवन खानों का वंदर बाद आप करो, दिन में 2-3 बार सौंफ रो सेवन करो, सुबह सुबह और शाम के टाइम अगर आप पानी में भिगाए के रख दें सौंफ वे रो सेवन करो तो ऊपर आंतरिक ठंडक भी रहे और अपर जो त्वचा है वो भी चमकती और दमकती रहे। तो देखो बरसात तो बचन के वास्ते अपन पहले कितनी सारी तैयारियों करनी पड़ी है, जब दिहाड़ी घनी सारी तैयारियां हैं जिसके बारे में अपन धीरे धीरे आवन से पहले आप वेरी तैयारी करें और अनजाने में ही कर देवे अपन वो स्वभाव में शामिल होया करें। तो देखो आप बातचीत और चर्चा तो जारी रखता हूँ, पर पहले बहनों लिया गीत संगीत दुनिया में ये प्यारे से लोग

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

प्यारो तो गीत सुनन रे बांध चुको है ता नॉर्मल खुश हो जावे और साथ में देखो है जरूरी संदेश भी सुन लिया आपको। तो बहनों आप साफ सफाई भी कर ली और घर नो भी संवार लियो, खुद भी संवर लिया, पर आज को मौसम है और हर मौसम में आप महिलाओं न परी बहनों न तो काम करना ही पड़े। तो जब आप कोई भी काम कराई तो वे माया अपना कमजोरी और थकान भी लगी। तो ये वास्ते बहुत ही जरूरी है कि आप जो है खुद रो ध्यान रखो, क्योंकि आप सब रो पूरे परिवार रो छोटे सूले बड़े व्यक्ति रो ध्यान रखो, लेकिन वे माए खुद रो ध्यान रखना जो है वो छूट जाया करे। तो अपना खुद रो भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो बहनों आप जो महिलाओं हो वे माए अपने मांसपेशियों रो स्वास्थ्य है, हार्मोन संतुलन है, हड्डियों मजबूती है, ये सब चीज़ों के वास्ते जो है अपना प्रोटीन रो सेवन करना बहुत ही जरूरी है। और आप रोज को भोजन है वे रमाए 20-30 ग्राम प्रोटीन जो है अपना मिले इतो तो कम से कम होना ही चाहिए। तो आप रोज को दैनिक आहार है उगर माए आप देखें कि पनीर है, दालों है, दूध सूर्य को बनोड़ी चीज़ है और अगर आप प्रयोग कराएं तो अपन वैसे प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जा करे। और देखो मांसाहारी लोग हैं वो अंडे और सूबी मिले, पर आजकल आप देखें कि ज़्यादातर लोग शाकाहार ना पसंद करे। तो ऊपर जो महिलाओं हैं वो विशेष रूप से प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो बहुत ही जरूरी है और अपर संपूर्ण विकास हुए और अपन काम काज करने के बाद अपन थकान भी नहीं रहे तो पर अपन हर चीज बराबर मिले। उन वास्ते अगर आप अंकुरित अनाज और वो सेवन कराए तो अपर वास्ते बहुत ही बढ़िया रहे। और प्रोटीन के वास्ते देखो बहनों पनीर है, दही है, देखो पनीर से प्रोटीन अपन बहुत ही सबसे बढ़िया रहे और आसानी से पच भी जाया करे अपन, तो ये वास्ते है बढ़िया रहे। तो अगर अपन पनीर का छोटा छोटा टुकड़ा कर ले जाए और वह ना टमाटर का छोटा टुकड़ा काट के वह रमाए अगर आप पनीर ना डाल के हल्को से कालू नमक और जीरो डाल दे जाए और उन्हें 2 चम्मच दही डाल के अगर अपन यह भी खा ले जाए तो ऊपर ये सो अच्छो खासो अपन प्रोटीन की मात्रा शरीर में मिल जाया करे और वे सुबेरु देखो स्वाद है वो भी बढ़िया लगे, क्योंकि अपो मनुष्य हो और मनुष्य ना हर चीज अपनो जीवनो शरीर नो संतुलित भी रखना है, लेकिन देखो स्वाद है वो भी आवनो बहुत जरूरी है। तो स्वाद ऊपर वास्ते बहुत मैटर करे। तो ये वास्ते है अगर अपन पनीर नो ये फॉर्म में खा जाए तो अपन ना आसानी से खा भी सको। साथ ही साथ अपन देखो रोज रो दोपहर रो खाना है वगैरह मोए दालों हैं, फलियों हैं, यह चीज़ों वगैरह का उपयोग करो तो अपने वास्ते बढ़िया रही। जो मूंग है, मसूर है, राजमा है, छोला है, यह अपने शाकाहारी प्रोटीन के मामले में सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत है। ये वास्ते यहाँ उपयोग भी अपन करना चाहिए। सोयाबीन जो है वो बहुत ही अच्छो रही अपने शरीर के वास्ते और अगर आप प्रोटीन जो पावर हाउस तो भी अतिशयोक्ति कोनी हो। किनोवा आजकल आप देखें कि अनाज रमाए किनोवा प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यह जो है ग्लूटन मुक्त हुए और पकावनो भी बहुत ही आसान हुए। अगर आप ये रो प्रयोग भी कराएं तो अपने वास्ते वो फायदेमंद रहे और प्रोटीन रो बढ़िया स्रोत भी है, क्योंकि आजकल आप देखें कि गेहूँ जो है वह में ग्लूटन होया करे और ग्लूटन तो काफ़ी लोगों ना जो है समस्या रहे, कोई रो शरीर सूज जावे, कोई ना उल्टियाँ और हुए तो सबरा अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रभाव हुए। तो इस वास्ते अगर आप हुई जांच करवा दें और हुए रहे हिसाब तो अगर आप उन्होंने छोड़ के और जो कोई चीज़ बताई जावे हुए रो सेवन करो तो अपने वास्ते वो फायदेमंद रहे। साथ ही साथ जो मेवा और बीज है वो अपने वास्ते फायदेमंद रही। जो अखरोट रो प्रयोग है, बादाम रो प्रयोग है, चिया सीड्स है, कद्दू रा बीज है, यह देखो है
ए प्रोटीन के साथ साथ अपोरेमोस स्वस्थ वसा मतलब ओमेगा जो थ्री है। शाकाहारी जो व्यक्ति है वे ना इन सब चीजों से अच्छी मात्रा में ओमेगा थ्री मिल जाए। और अगर आप अलसी के बीजों नो भी अगर हल्का सी साफ करके और उनमें नींबू लगाए के रख दीजिए और पछे उन्हें थोड़ी देर बाद सेक लीजिए और उए रो भी अगर आप खाणो खावन के बाद प्रयोग कर जाए तो भी ओमेगा थ्री रो एक अच्छो सोर्स होया करे। तो यो छोटी छोटी सी चीजों से आप खुद न स्वस्थ रख सको और स्वस्थ अगर आप खुद रह सो तो आप पूरे पूरे घर परिवार रो अच्छी तरीके से ध्यान भी रख पासो। तो आप पूरे घर परिवार रो तो ध्यान रख सो साथ ही साथ अपन जो है अगर आप घर में बच्चियों हैं और अगर आप खुद भी पढ़ाई से जुड़ा रहे हैं तो आप देखो कि पढ़ाई रज को है बहुत ही अच्छा फायदा है क्योंकि शिक्षा जो है वो एक अड़ू हथियार है कि आप ना गरीबी से निकाल के सीधो ऊंचे तक उगा सके। वो सिर्फ और सिर्फ ताकत एक शिक्षा में है। तो इस वास्ते पढ़ाई भी जो है कोई उम्र को नहीं हो है। और पढ़नो आप और दिमाग रहे वास्ते भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ नयो पढ़ता रहे मैं तो अपर जो दिमाग है वो भी चलाए मान रहे तो इस वास्ते जरूरी है। और अगर अपने घर में छोटा बच्चा है तो आप वो खुद अगर पढ़िया लिखिया हो तो आप खुद वो पढ़ा जाए ना कि आप वो कोचिंग मथे या ट्यूशन मथे निर्भर रखे क्योंकि आजकल अपरो समाज बदल रहे है और समाज बदले तो जो लोग करे वो सब जना करण लग जाए। आजकल आपको देखा है कि आप 3 साल के बच्चे ना जब स्कूल भेजाए तो साथ ही साथ स्कूल भेजन के साथ उन्हें ट्यूशन भी भेज दिया करें जो कि नहीं होना चाहिए। जो छोटी छोटी सी चीजें आप उन्हें घर भी सिखा सकें और आजकल भी सब मामों लगभग पढ़ी लिखी हुए तो आप माध्यमिक शिक्षा तक रो तो कोर्स खुद कराए सकें और उसके बाद आप देखें कि अगर आपका बच्चा खुद काबिल है तो धीरे धीरे वो खुद ही पढ़न लग जावे। तो कोचिंग जो है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ठीक है बाकी आप खुद पढ़ा जाए और बच्चा जो स्कूल में पढ़े उस तो भी बच्चों वास्ते पर्याप्त है बजाय कि आप वो मतलब एक और बोझ डाल जाए ट्यूशन रो तो वह सब बढ़िया आया है कि आप खुद पढ़ा जाए और बच्चा जो स्कूल में पढ़ ले उस तो काफ़ी हुए बच्चों के वास्ते शिक्षा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है टाबरों के वास्ते। तो आप तो समय जो वो ट्यूशन और में जावे उस तो अगर वो खेल कूद में लगावे तो हमारा जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो बराबर हो जावे। नहीं तो आजकल आप देखा है कि बच्चा जो है वो खेलन कूदन रो समय ही कौन मिले क्योंकि हमारा पूरा समय जो है वो पढ़ाई में जावे और हर बच्चा एक समान कौन ही होया करे सब रो मानसिक जो स्तर है वो अलग अलग हो गई। तो अपना पर बच्चे रे जो अभिरुचि है वह ना भी पहचान हो चाहिए और वेरी अभिरुचि के अनुसार अपन वे हिसाब से वे ना आगे बढ़ने के वास्ते प्रेरित भी करना चाहिए। तो बहनों आप खूब सारी बातों करी पर अकेले अकेले बातों करते करते थोड़ो से उबाऊ हो जावे। तो बहनों ने लिया गीत संगीत की दुनिया में ये प्यारे से लोकगीत के साथ

सुबह नहाणो सुणियो पर प्यारो सो गीत तो बरसात्री भी मंगल कामना कर दी है। हमें जो है बखत को नहीं कि अपाओं पूरी बातचीत और चर्चा जारी रखो। तो आप तो फिर मिलन दे वादर साथ आपकी वीडियो से की टीना नो दे राउ सीख राम राम सा।

0: first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open Badminton Tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: बिम्स्टेक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है।
2: There is an urgent need for us.
3: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
4: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चला।

0: और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
0: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयर फील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयर फील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व ये हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत ने पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
2: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात के पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक

दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6वीं कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियो को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उर्दू मजलिस के सामेईन
1: को हाँ। भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: एक चंद्रमा आधा है, रात आधी है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी आधी नहीं।
2: आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी।

प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा भवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी।

फिल्म नवरंग का दो गाना आपने सुना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती का ये कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

请查查，查查查查。

सचिन देवबर्मन की तर्ज थे मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म काला पानी से।

नहीं बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हसी है किधर का इरादा तेरा, आंख मुड़ती हुई जुल्फ उड़ती हुई, फासला क्यों है ज्यादा तेरा।

तेरा है लेकिन सनम साथ में है किसी अजनबी के कदम। हम सफल तो ही मेरा है लेकिन सनम साथ में है किसी अजनबी के कदम। मेरी उलझन यूं ही बेसबब तो नहीं, दिल की बेताबियों की कसम।

0: ओपन ईयर की बनाई तर्ज पर इसे गया मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूं।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमी।

जो तुमको जानते हैं वो जानते हैं तुम्हारी बातें। तुम कह लो शर्म इसको।

0: गंगा की लहरें सुन का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सरों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सरों में ढाला चित्रगुप्त ने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांव
0: में, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जहां आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल सुरों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज है श्रोताओ। यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप सुनिए ये गीत, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: daqui
1: da sua rede.
2: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार।
3: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: तो भाई आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी।
3: बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जिन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से उनसे बातें करेंगे और हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे।
2: तो भाई वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं, सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता है कि आज के विषय क्या है।
3: हाँ।
2: तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत जरूरी है,
3: बताना जरूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप पर।
2: तो मनोरंजन की बात हो रही भाई, रेडियो की बात ना हो, मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो और हमारे जो श्रोता है वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम है उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है।
3: जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के,
2: हाँ वही तो कहा ना,
3: आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे सब मिलके, सखियों से बात करके। तो ये सब चीजें जो है पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो है वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं, सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही।
2: बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है किसी को नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति है ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो।
3: बिल्कुल,
2: चार दोस्त मिल गए जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी, किसी पार्टी जैसा करेंगी, उनका मनोरंजन हो जाता है।
3: बिल्कुल,
2: बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है। तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखिए, अपने विचार हमें लिखकर।
3: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामो लेगो जो की जड़ी बूटी विशेषज्ञ है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में।
2: मतलब ये ऐसे उपचार हैं कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट, यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है, यानी कि जो चीज अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के बराबर।
3: प्राकृतिक उपचार होता है, तो प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान लें तो हम हमारे सारे चीजों का इलाज वैसे हो जाएगा।
2: आरती आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगाकर पीते हैं, पसंद करते हैं,
3: महंगी आती है वो जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में, वो बहुत महंगा।

0: पानी आता है, तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत है। तो शुद्धता होती है जो प्राकृतिक चीजें जड़ी बूटियां होती हैं, उनका कुछ अलग ही।
1: तो शुद्ध हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है। इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो जिन सखी की आज हम बात करने वाले हैं, ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं।
0: बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज जी, और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हूँ
1: दिमागी कसरत
0: थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे जीभ को घुमा देते हैं पूरी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियां होती हैं, पहेलियां बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं बूझो तो जाने। अब ऐसी बात, हमने कुछ लाइंस बोल दी, अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब है, इसका क्या, कौन सी चीज छिपी हुई है इन शब्दों में। तो ये पहेलियां जो है ना, इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना उसकी सारी बिल्कुल काम में लग जाता है, बिल्कुल कि ढूंढने क्या है क्या चीज।
1: और पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से। तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं, बच्चों के दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा आपने क्या किया है हमारे साथ जरूर साझा करें।
0: नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते रहते हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है, तो वो सब चीजें खत्म हो जाती है।
1: और बारिश का मौसम है ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब चीजों
0: का। वैसे भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए, कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग
1: जी।
0: तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पियेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें।
1: और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस तरह हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले ताकि वो प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार
2: हैं।

0: हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी और अब वो हमें कमेंट भेजेंगे,
1: पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे
0: जी, और जो हमारे विषय है उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर, और बात जब मनोरंजन की होती है आरती तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था।
0: हाँ,
1: गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थी, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे, रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक खेल जो है सब परिवार पूरा मिलकर खेलते हैं हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियां और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन।
0: और पहले के जमाने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं और या पासे होते हैं उसमें, तो वो हम खुद ही किसी कोयले से या चौक से जमीन पर उसको काट लिया करते थे और कुछ पत्थर वत्थर रख के बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीजों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाजार में, और अब ये चीजें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर टैब पर भी हम खेलते हैं।
1: अभी भी गाँव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई देती, वो बहुत अच्छे लगता है वो, और जो जमीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से और एक दो तीन चार
0: और वो लंगड़ी से चलते हुए खेलते हैं, कहीं दो पैर टिकाने हैं कहीं एक पैर टिकाना होता है,
1: इस तरह के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन हाँ ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव रखते।
0: और बिल्कुल इन माध्यमों में सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि संस्कार है, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था और मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं
1: जी।
0: डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, ओटीटी, ये इतनी सारी चीजें हैं इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रखी।
1: बिल्कुल। और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात।
0: हाँ,
1: एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
0: हाँ,
1: और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है। अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है।
0: हम बातें और करेंगे और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें।
1: बिल्कुल।

0: आरती, ये जो इस तरह के गीत है ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है,
1: बहुत ज्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो सबको पसंद आए।
0: जी, और परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग रखेंगे, तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है, लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं।
1: बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा स्वीकार कीजिए।
0: और अपने बच्चों को भी जो अपनी संस्कृति है उससे अलग ना होने दीजिए। अब वो नई चीजों को, जो भी आधुनिकता है, उसे अपनाए, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उससे जुड़ाव बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहां इंटरनेट ने बहुत सारी चीजों को लेकर आया है, वेब सीरीज आई हैं, आगे उन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी AI एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं, इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को, और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है। और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में, तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें।
1: बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं।
0: हाँ।
1: पहले रेडियो पर मनोरंजन हुआ करता था, पर आजकल तो मोबाइल फोन पर बहुत सारे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं, पर मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है। पर मेरा मनोरंजन का स्वरूप पहले जैसा ही है, लगता है कुछ भी नहीं बदला है, मुझे वो पुराने रेडियो का दौर अच्छा लगता है, इस कारण जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मैं सिंपल पुराने रेडियो पर ही सुना करता हूँ, और मेरे लिए यही अच्छा है।
0: हमारे सुनने वाले श्रोता है ना, जो इतने पुराने गीत जो आज हम सुन रहे थे ना, ये अक्सर सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उन्हें सुनाई पड़ते होंगे।
1: हाँ।
0: तो आज एक बदलाव ये भी है उनके लिए। हाँ। कि इतने

0: अरे गीत आज सखी सहेली मुझे सुनाई पड़ रही है। और क्या संदेश है?
1: एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मनोरंजन अधिक जो विविध है, त्वरित और सस्ता हो गया है, घर बैठे ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे, अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियां भी कम हुई है और आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है।
0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है बड़ों की, और ना सिर्फ आंखों पर आपकी और भी इंद्रियों को ही प्रभावित करते हैं। तो हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीजों को लेकर बदलाव करते हैं, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके बहुत कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो टीवी लगा दिया, या तो फिर हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहां से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो टीवी और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटकाकर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं और फिर वो चीजें आदत में बदल जाती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, मनोरंजन देना है लेकिन स्वस्थ मनोरंजन हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है।
1: और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं
0: जी,
1: तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना तो एक जुड़ाव होता है खाने के साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है।
0: हाँ।
1: इसलिए जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो उस समय टीवी मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए, कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
0: बहुत सही बात कही आरती आपने कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें है इस तरफ कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक तरफ हम टीवी भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे। और जितना असर हमें हर चीज को लेकर वो भोजन देगा शायद नहीं दे पाए।
1: बिल्कुल। तो और हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफी बदल गया है, हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीजें चेंज हो गई थोड़ी।
0: बिल्कुल। तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं
1: बिल्कुल बदलाव
0: और बदलाव हम लेकर आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं।

0: अब आज कई क्या ऐसा
1: हम सोशल मीडिया पर बात
0: बिल्कुल आज कई बार हंसी जो होती है वो हमारे जो इमोजी होते हैं ना हाँ। वो बनकर मोबाइल स्क्रीन पर रह जाती है। पहले संवाद आमने सामने होते थे, अब आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं। कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में फोन में बिजी दिखाई देता है।
1: और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था,
0: अरे वाह,
1: जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ, उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमाघर और दूरदर्शन का जमाना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें काफी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्ट

0: फोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए।
1: देखिए परिवर्तन तो होता ही है
0: जी,
1: अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारे एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मजेदार एक और मनोरंजन का साधन था कथा कहानी सुनाने का। सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था। और कथा एक दिन में खत्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी नक्शेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।
0: और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, इस जिस जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहां से कॉपी करके एज इट इज वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और आपकी क्या बात है
1: उसे
0: वो राय भी हमने लिखकर
1: हमें आपके विचार जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: ये तो हमें भी पता है, बिल्कुल गूगल पर सब तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिखकर भेजने, इसलिए हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिखकर भेजिए कि आपने क्या बदलते देखा है इस दौर में।
1: जो आपके अनुभव है ना, वो जब हम साझा करेंगे ना तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे
0: जी।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले, कठपुतली के शो, नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे, इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के, जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई है कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं, तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है
0: बिल्कुल। और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती, अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए।
0: बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित, सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीजों को आप लीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन भी जरूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीजों को देखिए, ऐसी चीजों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो, और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहे, इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे खेल हैं उनपे भी आप जा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा
1: आप, कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताई, आप वो भी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं, अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल सकते हैं,
0: जिनमें कोई अलग से कोई खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ करते थे। लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है कि अभी समय है एक अंतराल का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
3: बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी।
2: अभी बातचीत से पहले हम सुनेंगे,
3: देखा चंचल जी की तरफ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम
2: गीत करेंगे।
3: चलिए पहले
2: भाई मनोरंजन की बात हो और मनोरंजन में गीत ना हो तो कैसे होगा।
3: आपने

0: तो भाई इस गीत के बाद में अब हम बात करेंगे सखी विशेष में, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उनकी जो है यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ है।
1: बिल्कुल।
0: और यानुंग जामोह लेगो भारत के अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संजोने और लोगों को निस्वार्थ उपचार करने में समर्पित किया है। वो विशेष रूप से कुछ समुदाय हैं उनमें प्रचलित उपचार, पारंपरिक उपचार पद्धतियों की संरक्षक मानी जाती हैं। 1963 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सिका टोड़े गांव में उनका जन्म हुआ और ये वहां के समुदाय हमसे ताल्लुक रखती हैं।
1: बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा में उनका प्रवेश घर से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटी चिकित्सा सीखी, जो कि एक सम्मानित लोक चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में पौधों के चयन, तैयारी और उपचार और प्रार्थना से संबंधित पारंपरिक रीति रिवाजों का अवलोकन किया और लगभग 15 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1995 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट से बीएससी और एमएससी कृषि की उपाधि प्राप्त की।
0: विश्वविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करना शुरू किया और वो लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए 2023 में वहां से सेवानिवृत्त हुई और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक प्रशिक्षण को समर्पित कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज की स्थापना की, जो औषधीय पौधों और घरेलू स्तर पर जड़ी बूटियों के बागानों की खेती, संरक्षण और शिक्षा देने की पहल है, जिसके माध्यम से पूर्वजों के ज्ञान को व्यवहारिक खेती से जोड़ा गया है।
1: और लेगो के योगदान का एक मुख्य पहलू है पुनर्जीवन और ज्ञान का प्रसार। बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटियों की सूची बनाना, उनकी प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और नर्सरी एवं रसोई के खेतों में दुर्लभ प्रजातियों की खेती करना।
0: स्वदेशी हर्बल हेरिटेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी चिकित्सा के पारिस्थितिक आधार को मजबूत करते हुए उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 5000 औषधीय पौधों का रोपण करने में भी बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है।
1: और पिछले कई दशकों से यानुंग जामोह लेगो ने पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग उनसे संपर्क करते रहे, जिनमें पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याओं से लेकर श्वसन संबंधी शिकायतें और गुर्दे की समस्याएं, बहुत सारी चीजें शामिल है।
0: और आरती, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कह सकते हैं कि बड़ी बीमारियां भी हैं उसमें, और उन्हें उनका भी वो उपचार करती हैं। और पद्म पुरस्कार दस्तावेज 10,000 से अधिक लोगों के लाभ का दावा करते हैं। लोग लेगो अक्सर ऐसे विश्वास को व्यक्त करती हैं जो पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप है, यानी कि वो कहती है कि प्रकृति में ही बीमारियों के समाधान भी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है। ये एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जिसे वे पौधों के संरक्षण के संदेश के साथ जोड़ती हैं। लेगो का अभ्यास औषधि पौधों और जड़ी बूटियों के जो अर्घ होते हैं उस पर केंद्रित है, जिन्हें काढ़े, पाउडर, पेस्ट या तेल के रूप में तैयार किया जाता है। उनके प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2007 में सृष्टि सम्मान, 2013 में पारंपरिक वैद्य रत्न और 2019 में अरुणाचल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
0: तो बस लोग उनसे इसी तरह से चिकित्सा लाभ लेते रहे और वो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में इजाफा करती रहे, यही शुभकामना है। सुनते हैं गाना।
2: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।

साथन लेकर आए, कोई भूल जो तुमको साथन लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है।

0: शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का गाना था आरती, और हमने एक गाना सुनवाया था अपलम चपलम, और हमने एक दिमागी कसरत या पहेली पूछ ली थी अपने सुनने वालों से कि उस गाने में दो बहनों की आवाज, वो कौन सी दो बहनें हैं। तो बहुत सारे जो गाने हमने बाद में भी सुनाए ना, उनके लिए भी हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम कौन सा है, गायक गायिका कौन से है, वो सारी जो पूरी जानकारी है वो लिखकर भेजी है। लेकिन फिलहाल वो हम बता दें कि वो आजाद फिल्म का गीत था, आवाज थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। और बात है दिमागी पहेली की,
1: बिल्कुल,
0: तो पहेली जो है वो दिमागी कसरत करवाती है, और दिमागी कसरत के लिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी,
1: बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो कौन सा आप पहले पढ़ रही हैं संदेश?
0: एक संदेश में लिखा है कि मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही नियमित अखबार में आने वाली जो वर्ग पहेली होती थी ना, उन्हें भरने का बड़ा शौक रहा है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के लिए पहेलियां लाभदायक होती हैं। कुछ मिनट में पहेलियां सुलझाना दिमाग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए नियमित व्यायाम। हम किसी पहेली का उत्तर खोजते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, कल्पना, स्मरण शक्ति और सूझबूझ का एक साथ में उपयोग करता है। ये मानसिक अभ्यास सोचने समझने की क्षमता को निखारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि एक साथ कितनी चीजें जुड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक हमारे जो श्रोता है वो भी लिखते हैं कि शारीरिक कसरतें हैं उनके साथ दिमागी कसरतें भी बहुत जरूरी होती हैं। वैसे हर रोज सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पर हल्की कसरत करने के बाद प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, साथ में रेडियो पर विविध भारती भी सुनता रहता हूँ, दिमागी मनोरंजन रूपी कसरत भी हो जाती है। रही बात पहेलियों की, तो न्यूज पेपर में हर रोज आ रहे क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व करके टाइम पास करने के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पहेलियां ही नहीं, मैं जो सखी सहेली और सुरीला सफर प्रोग्राम में कमेंट्स लिखता हूँ उसके लिए भी शब्दों और वाक्यों को सोचता हूँ और उससे मेरी दिमागी कसरत होती है। जो लेखन का कार्य करते हैं बिल्कुल उनके लिए हर बार नए शब्द चुनना, और जो काव्य गद्य लिखते हैं क्योंकि एक जैसा ना हो, एक रास्ता ना लगे, हर बार सुनने वालों को पढ़ने वालों को नया लगे, इसके लिए नए शब्दों को सोचना, नई रचनात्मकता लेकर आना अपने लेखन में, ये बहुत बड़ी दिमागी कसरत है।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहेलियां सुलझाना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है, ये ना केवल हमारे दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखता है बल्कि सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत के कुछ मुख्य फायदे भी हैं, जैसे कि एकाग्रता में सुधार होता है, पहेलियों को समझने और उनका जवाब खोजने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, समस्या सुलझाने का कौशल आता है, ये हमें किसी भी स्थिति में लीक से हटकर सोचने में मदद करती हैं, और साथ ही नए शब्दों और तर्कों का उपयोग करके दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं और नई यादें बनती हैं और कुछ नया और मजेदार भी होता है, इसी हमें तनाव से राहत मिलती है।
0: हमारे श्रोता ने तो बहुत सारी पहेलियां लिखकर भेज दी हैं और अंत में उन पहेलियों के जवाब भी लिखकर भेजे हैं।
1: अच्छा
0: और देखिए एक बड़ा सुंदर संदेश है, पहेलियों के विभिन्न पहलुओं और सुरागों यानी उनके क्लूज को याद रखने से शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत होती है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है। आगे ये कहना चाहते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमता, पेचीदा सवालों को हल करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एकाग्रता और धैर्य, एक सही उत्तर तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है जिससे फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।
1: बिल्कुल। और सबने इसी तरह से लिखा है कि पहेलियां वास्तव में मस्तिष्क के लिए बेहतरीन दिमागी कसरत है, हमारे श्रोता कहते हैं ये हमारी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को चुनौती देती हैं जिससे मानसिक विकास होता है।
0: तो भाई अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए।
1: एक गीत सुनो।

0: आदित्य तुम सच सच बोलो कि बारिश जब होती है तो कई बार ना चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक है।
1: क्योंकि मैं खाती हूँ।
0: हाँ, तुम बहुत चटोरी हो, ये बात पहले भी श्रोताओं के सामने तुम मान चुकी कि तुम बड़ी चटोरी हो, और बारिश में भी चटपटा हम देख के जब हम देते ना कि तली भुनी चीजें बन रही है, कहीं पकौड़े हैं या कुछ और है, चाट बन
1: रही है, मन नहीं मानता है फिर तो।
0: लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को तुम कितना अनदेखा अनसुना करती है, अपनी नाक कान बंद कर लेती हो।
1: बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि बारिश के मौसम में मैं बहुत ही कम, कभी खा लिया अगर पकौड़े वगैरह, पकौड़े खा लिए तो फिर मैं उस दिन बहुत ही हल्का कभी एक टाइम खाना खाती हूँ, वो भी बहुत ही हल्का सा खिचड़ी ले लिया कुछ इस तरीके का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हैवी जब हो जाता है ना तो वो आपकी परेशानी कर सकता है।
0: बिल्कुल, आपको अपच की समस्या इस मौसम में बहुत जल्दी हो सकती है, और आपकी जो पाचन समस्या अगर जवाब देगी तो वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ लेकर आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में साफ उबला हुआ पानी पिए या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, ताजा और गर्म गर्म भोजन करें, खुले में जो भी बिकने वाले खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से बचें।
1: बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा बारिश पड़ी है उसके बाद हम गए हैं तो फिर बहुत नहीं बिकते हैं वो सामान, तो किस तरह से हम खा रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है, ताजा है या बहुत देर का रखा हुआ है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता
0: है। और हम सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें, बारिश में कई बार आसपास में पानी जमा हो जाता है।

0: कुछ ऐसी चीजें होती है ना गड्ढे जहाँ पानी सूखता हाँ। ही नहीं है, कुछ ऐसी अगर चीज रखी हमारी छत पर हमारे आंगन में गलियारे में वहां पानी भर के वो सूख नहीं रहा तो वहां मच्छर बहुत जल्दी पनप सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया इन्हें लेकर आ सकते हैं। तो वहां पानी का भराव ना होने दें, और घर में भी मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले जो अन्य साधन है जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए उनका उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लेकर आए उनको धोकर अच्छी तरह सुखा कर फिर उपयोग करें, तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर हम कहीं से बाहर से भीग गए भीग कर आए तो तुरंत कपड़े बदलें और अच्छे से उसमें हम स्नान करें या कुछ इस तरह की चीजें करें और जिससे कि ना भीगे ना रहें।
0: और बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य के लिए खास तौर पर ध्यान देना होता है क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है, इसीलिए इसमें इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। तो मौसम के अनुसार हल्के और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े भी आप बच्चों को पहना सकते हैं और बुजुर्गों के लिए भी इस चीज का ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है ये चीजें करनी। और साथ ही हमारे श्रोता भी है वो भी लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा और यात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ताजा और गर्म भोजन करें, बाहर जाते समय रेनकोट या छाता साथ में रखें, सड़क पर जलभराव और खुले हुए तारों से आप दूर रहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश होती है उस समय अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है। तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए।
0: हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिए, ताजा और सुपाच्य भोजन हो इसका ध्यान रखें क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी दलिया सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में नमी और बढ़ती प्रदूषण के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पिए और जो खाने जो बाहर सड़क पर बिक रही है चीजें और जो ढकी हुई नहीं है उनको आप खाने से बचिए, उन्हें मत खाइए, भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के लिए किसी चीज का आप उपयोग कर सकते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में नमी और दूषित पानी के कारण डेंगू मलेरिया वायरल बुखार और पेट का संक्रमण इन सब का खतरा बढ़ जाता है, इनसे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ शुद्ध पानी पिए, स्ट्रीट फूड से बचें, मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा घर के आसपास पानी जमा ना होने दें और जैसा हमने बताया भी था कि मच्छरदानी भी आप उपयोग कर सकते हैं।
1: एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगने से बचें और अगर भीग जाए तो घर आते ही सादे या गुनगुने पानी से नहा लें और सूखे कपड़े पहने, हाथों को अपने साफ रखें, बैक्टीरिया से बचने के लिए समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें, आंखों के संक्रमण

0: बचा जा सके। और ये तो बहुत सही बात है कि कपड़े एक बार गीले हो गए और लगातार बारिश है तो उनको सुखाना ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। और नमी वाले कपड़े अगर हम पहने रहेंगे तो शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात का मौसम सतर्कता हटी दुर्घटना घटी जैसा होता है, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको या परिवार में किसी को भी तेज बुखार, अत्यधिक थकान, उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से आप परामर्श करिए।
0: और अब मुझे लगता है कि हमें एक गीत सुन लेना चाहिए और ये होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा डीजे चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को अनुमति
2: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में फैले हमारे श्रोता जुड़ते हैं विविध भारती से, हमारे इस कार्यक्रम से, और करते हैं अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश। ये कार्यक्रम हम और आपको जोड़ने में एक सेतु का काम करता है और इससे आपका और हमारा जुड़ाव यकीनन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो हमारे पहले कॉलर कौन है जरा देखते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं? अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका नियमित होता बोल रहा हूँ, मांगीलाल धाकड़ है।
0: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छी हैं।
1: जी मैम, आपके प्रोग्राम में सुन के बहुत खुश होता हूँ। विविध भारती बम्बई के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी मैम।
0: अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज आ रही है।
1: जी जी मोर है, मैं अभी खेत पर हूँ, खेती बाड़ी पर।
0: अच्छा, मतलब आप अपने खेत में बैठकर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं?
1: जी जी मोर आ रहे हैं, मोर बहुत पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, सारी तरह की पक्षी नजर आते हैं हमारे गांव में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना?
1: जी जी मैम, अपने खेती बाड़ी में मक्का बोरा की उसमें यही बैठा हूँ मैं, यही से बात कर रहा हूँ।
0: तो आपके शहर का या गांव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे गुना एमपी में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले।
0: अच्छा,
1: अभी तो अच्छा मौसम है।
0: चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना?
1: जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है, कुछ नहीं नुकसान नहीं है इसमें।
0: तो ज्यादा मोर आते हैं क्या?
1: हाँ बहुत मोर है हमारे गांव में।
0: उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप ताकि फसल को नुकसान नहीं हो?
1: बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती है, अभी थोड़ी बहुत चौकती है, चौक के निकल जाती है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
1: और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश, रतनामा, सखी सहेली और आपके जो मन चाहे गीत, ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता है और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे बंजारन का गीत है, ये जीवन इतनी बार मिले, हर बार मुझे साजन का प्यार मिले।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता है वो इतने नियमित है कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल सर, खास तौर से एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को।
0: हाँ।
1: को देखिए, आकाशवाणी एक ऐसे माध्यम है जिसके जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनकी चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है। और हम बच्चों की पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छी, जैसा आप आलोचक विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे फरवरी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर्स का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे ये गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: पर्दा है पर्दा है, पर्दा है पर्दा है, पर्दा है पर्दा है, पर्दा है पर्दा है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को भे पर्दा ना कर दूंगा पर्दा, पर्दा नशी को भे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा।

0: की शहजादी, मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का, तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन
1: दामन दामन
0: तेरा दामन न छोड़ूंगा, मैं हर चिलमन
1: चिलमन चिलमन
0: मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से, जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूब सूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा,
1: तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।
0: हाँ, पर्दा नशी को बे

0: पर्दा है घर का, पर्दे के पीछे ये पर्दा नशी है, पर्दा नशी का बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
2: जी राम स्वरूप जयकवार बोल रहे हैं, ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
1: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
2: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसे हैं मैडम जी?
1: हम भी अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
2: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी दो तीन दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
1: अरे वाह,
2: बादल हो रहे हैं,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
2: जी। गाना सुना दीजिए, खैर जी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
1: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा

Namah Shivaya. Karega Pad.

0: பாடி வந்த போது பாடிட்டு பாடிட்டு. हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से.
1: नमस्ते बहन जी.
0: नमस्ते.
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ मंदाकिनी जी.
0: जी जी.
1: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ. विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चलना और आपस में मेलजोल होता था बहन जी.
0: जी जी.
1: मेरी उम्र 84 चालू है. अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुफ्तगू करने का इंतजार कर रहा था. सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता.
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं.
1: ये मेरा जो शौक है ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्य वर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी.
0: बहुत अच्छी बात है. तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: फिर प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, भरे भी धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है. वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तक तो ये ताजों की दुनिया. इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है बहन
0: जी. बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है और मेरी पसंद का भी ये गीत है. चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को सुनते हैं.

0: तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल जाए तो क्या है।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से,
2: मैं पप्पू चंदन बोल रहा हूँ भोपाल से।
1: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
2: बढ़िया हूँ।
1: क्या कर रहे हैं इस समय?
2: ड्यूटी पर आ गया है बेकरी में।
1: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
2: जी जी जी।
1: क्या समय है आपके आने का?
2: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक ड्यूटी में आ जाते हैं।
1: और रात तक
2: 9:30 बजे तक।
1: अच्छा, चलिए नौकरी आराम की है ना?
2: जी जी।
1: तो बताइए कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में, बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
2: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
1: आप भी कुक का काम करते हैं?
2: जी जी, मैं केक बनाता
1: हूँ। अरे वाह, कौन से केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
2: नॉर्मली चलता है पाइन एपल, ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वही आदत। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ये
1: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
2: बन जाते हैं, मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 8-10 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही जैसा चल रहा है।
1: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
2: 20 साल हो गया, 2002 से लगा था।
1: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
2: विधाता पिक्चर का मैम, आपका कुछ चंद लकड़ियों का, विधाता पिक्चर का।
1: गाने के बोल बताइए।
2: आपका कुछ चंद लकड़ियों का, ऐसा कुछ।
1: चलिए आपकी पसंद का ही गीत सुनते हैं।

ನಡೆ ಪಣಗಟ್ಟ ಪೇಚಾಚೆ ಲೋಕ ಕಡೆ ಓ ಮುಜ್ಕೋ ಕರ್ದೇ ಹೈ ಕಾಮ್ ಬಡೆ ಓಯಾ।

मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का, मैं मालिक अपनी किस्मत

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार, राम राम। कैसे हैं?
1: मेरी बहुत बढ़िया है। मजाकनी जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार वर्मा, गांव हीरा वाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: शहर नहीं, हमारा तो गाँव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गाँव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान जो है लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समा पोट बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: लेकिन जो बरसात चल रही है कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और जैसे मौसम अच्छा है
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
1: जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हमें जिम्मेदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन 3 दफा गेड़ा लगाना सुबह शाम दोपहर, क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं जी, 4-5 दिन तक, उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहेगा। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलिहान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम।
1: मैडम जी कराते फिल्म से सुना दो चना जोर गरम।
0: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: दुनिया के हालात पर अपना एक

मेरा चना खा गया कोरा, मेरा चना खा गया कोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको थोड़ा, चना छोड़ गरम, चना छोड़ गरम बापू मैं लाया मजेदार, चना छोड़ गरम।

जवाबी इसका कोई नहीं जवाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग सुतोता संग बस स्टैंड बंदा भी रही थे वो चाय वाले को ना चाय पी लो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी?
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेलिंग जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
0: अच्छा 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकान हो गई है अब चाय की। और नाश्ता है, और नाश्ता भी अब खाना हो तो एक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुंह में पानी आ गया ये सब सुन के, तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं। और चाय ऐसी रहती है कि ये अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होते रहते हैं। और ये हमारी तो चाय रस्ता ही रहती है, दरी नहीं रहती है।
0: हाँ तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कूलर में पिला रहे हैं या प्लास्टिक की गिलास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाए आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की दाल ना मोतियों की हार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ गुजरात से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पुत्रा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम रेडियो पर मैं गीत और जो 3 बजे कार्यक्रम आती है ना तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह, प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा।
1: त्रिपुरा तो खेती रबड़ी खेती है तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है, तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है तो इसके लिए पर्यटक आती है तो घूमते जाते है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, उसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माया का मंदिर में गया था तो बहुत अच्छी है मंदिर घूमने के लिए, बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान।
1: त्रिपुरा में तो खेती में बहुत अच्छी बांस का जो
0: काफी अच्छे सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का जोरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: और आपको बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हकाई जुताई होती है और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी मतलब आपको बताऊँ 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊँ आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है 2 फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं वो गर्मी में खत्म होता है तो नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी उसके बाद गेहूं लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं

0: फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार
1: जी। जैसे तो बीज उपचार करके लगाया जाता है और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार तो इल्लियां भी होती है सोयाबीन में, मटर में, लहसुन में, तो उसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा।
1: और ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप पे आने से हमें आपको बताऊँ स्प्रे की प्रसार मिलता है, और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे बीज भर्ती चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम सुनते हैं, और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पथरा वाले जो कार्यक्रम आता था ना जी उसमें काफी लेटर लिखे।
0: बताइए इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, आप कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: फिल्म का में प्यासा सावन और गाने की बोली मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: तेरी पहली पवन।
1: हेलो फरमाइश कर रही हूँ विविध भारती से।
2: मंदा जिनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात कर रही हूँ आपके साथ मेरी।
1: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
2: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा तहसील शोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
1: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
2: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
2: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
1: अच्छा
2: उम्र अभी 63 है।
1: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं, विशेष कोई?
2: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आती है वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
1: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई है?
2: हाँ, वो बताने का, वो उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
1: फिर उनकी मदद करते हैं। हाँ हाँ ठीक है।
2: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
2: मैं वीर भट्ट के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आ रहे हैं दीदी, सभी सखी सहेली, हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाभार नगर में अभी जो शुरू हो गए ना वो मन क्या है गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
1: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
2: खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी।
1: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
2: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी पास में है वो भी सुनता हूँ।
1: उसके
2: बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है जी।
1: उसके
2: बाद में मैं AM पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम, जो हमारे राजकोट अहमदाबाद वडोदरा उसके पर सुनता हूँ मैं।
1: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
2: वो बिल्कुल,
1: कहीं न कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से समय आने वाला है।
2: जो रेडियो मेरे पास है, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आती थे ना छोटी
1: छोटी
2: लेके सुनता था।
1: वो अभी भी आपके पास है?
2: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
1: अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
2: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
1: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपसे।

की बाहर देखो ये आंधेरी।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: ये मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बजनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा रहता है साइड पर, तो मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बटनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको, जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए।
0: अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दू तो की बात राज रहने दो।
0: अच्छा,
1: इशारों को इशारों में।
0: ये कव्वाली है।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब
0: और आशा भोसले की आवाज़ में।
1: और बिंदु और प्रांत

अरे छोड़ के रख दूं, बड़े जो हाथ तो उस हाथ को मैं छोड़ के रख दूं, मेरी जान तोड़ के रख दूं, जो नावा के पहन मुझसे।

0: उजाड़ के रख दूं, खुशी से कोई जीता है खुशी से उसको जीने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो।
1: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222-8867-02-8-8-0222-4-00-2462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: हेलो फरमाइश।

थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी।

रेडियो वाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को आपकी दोस्त मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो आज हो चुकी है। जी हाँ, 16 जुलाई गुरुवार से हो गई है और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाली जाने वाली ये भव्य यात्रा पूरी सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर जाते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो ये 16 जुलाई से 24 जुलाई तक जो है

0: ये चलेगी। और इसमें सुनावेश यानी कि सोने के आभूषणों में जो है भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा जो है वो दर्शन देंगे 25 जुलाई को। और दोस्तों रथ यात्रा जो है वो हमारे यूं कहें कि धार्मिक उसमें धार्मिकता में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। आमतौर पर भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह में जाना पड़ता है, लेकिन ये साल में एकमात्र ऐसा अवसर होता है जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपनी प्रजा और भक्तों को दर्शन देने सड़कों पर आते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान पूरे 9 दिनों तक निवास भी करते हैं। और दोस्तों इन रथों रथ की जो है बहुत अद्भुत विशेषताएं भी होती है। इस यात्रा में 3 विशाल लकड़ी के रथ जो है वो उपयोग किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है। और दोस्तों इन रथों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हें बनाने में कहीं भी लोहे की कीलों का इस्तेमाल नहीं होता है। इन्हें केवल प्राचीन भारतीय शिल्पकला के आधार पर लकड़ी से ही बनाया जाता है। और दोस्तों इस यात्रा को लेकर उड़ीसा सहित देश विदेश के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह के साथ मनाते हैं इसे। और इस साल जो है लगभग पुरी में 30 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना भी है। दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ जिन्हें कि उनकी जो मूर्तियाँ भी जो है वो भी लकड़ी की ही होती है, काठ की बनी होती है, और उनमें आज भी भगवान का अंश जो है वो विराजमान है, हम सभी ये जानते हैं। और जिस तरीके से जो है पुरी में ये रथ यात्रा निकलती है तो लाखों लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। और मान्यता है कि इस रथ को खींचने से जो अपने मन की जितनी भी इच्छाएं होती है वो सब पूरी हो जाती है। और वैसे भी भगवान के दर्शन मात्र से ही हम कहते हैं कि सब कुछ जो है हमारा सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो जब भगवान स्वयं चलकर हमारे सामने से आते हैं तो वो दृश्य जो होता है वो एक अद्भुत ही होता है। उसे देखने में और उसे महसूस करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति भी होती है। और दोस्तों ये रथ जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कहीं पर भी कोई किसी भी लोहे के कील का इस्तेमाल नहीं होता, ये पूरी तरह से जो है काष्ठ यानी कि लकड़ी का ही बनाया जाता है। और इतने विशाल जो ये रथ है उसके बाद इन्हीं रथ की लकड़ी से जो है जिसमें पुरी में जो भगवान के लिए भोज तैयार किया जाता है उसमें इसका उपयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों ये जो जैसा कि हमने बताया कि ये जो रथ यात्रा है जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो पूरे 16 जुलाई से 24 जुलाई तक जो है ये चलेगी। यानी 24 जुलाई को जो है बाहुदा यात्रा रहेगी यानी कि वापसी होगी जब भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा जो है फिर से अपने निवास पर अपने मंदिर में आकर के स्थापित हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे जैसे कहा जाता है कि मान्यता है पुराणों में इस रथ यात्रा का बहुत अधिक धार्मिक महत्व भी है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसकी जब रस्सी को खींचा जाता है बहुत लोगों द्वारा तो उसमें भी एक कहते हैं कि एक भाव होता है, एक भावना जो है वो जुड़ी होती है भगवान और भक्त के बीच में। तो ये रथ यात्रा इसी का हम कह सकते हैं कि इसी का एक उदाहरण है, इसी का एक स्वरूप है कि किस तरीके से भगवान जो है स्वयं भक्त के पास आते हैं उन्हें दर्शन देने के लिए। चलिए दोस्तों अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवार

0: के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका और ग्रैंड ओल्ड लेडी के बारे में। जी हाँ, महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आशफ अली, जी हाँ, जिनका जन्म 16 जुलाई यानी आज ही के दिन हुआ था। उन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराने और भूमिगत रहकर स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व देने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है और ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका पंजाब में हुआ, जो कि अब हरियाणा में है, एक बंगाली परिवार में हुआ था और उनका वास्तविक नाम अरुणा गांगुली था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में हुई और बाद में उन्होंने लाहौर में कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों, वे 1928 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अली के साथ विवाह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसीलिए वो जेल भी गई। उनका यूं कहें कि सबसे साहसिक कार्य 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार द्वारा सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारी विरोध के बीच कांग्रेस का झंडा फहराया, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए भूमिगत रहकर 3 वर्षों तक आंदोलन चलाया। राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर उन्होंने इंकलाब पत्रिका निकाली और गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन भी किया। दोस्तों, आज़ादी के बाद वे समाजवादी विचारधारा से जुड़ गए। 1958 में वे दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई। 1960 में उन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की और पैट्रियट दैनिक समाचार पत्रिका का संपादन भी किया। दोस्तों, उन्होंने भारतीय महिला आंदोलन में भी अतुलनीय योगदान दिया। उनके साहसिक कार्यों के लिए उन्हें 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार और 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके अदम्य साहस और स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। जी हाँ, ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं और एक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो ऐसी ही भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका ग्रैंड ओल्ड लेडी के बारे में हमने बातचीत की। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं संगीत दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

0: अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान।
1: I love you daddy।
0: तू मासूम

0: ले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान।
1: I love you daddy।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और आदित्य नारायण की आवाजों में अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत। तो दोस्तों, अब हम आपको कुछ जानकारी दे दें। पीएम स्वनिधि योजना यानी कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के बारे में कुछ जानकारी। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है पीएम स्वनिधि योजना। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का लोन जो है वो प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इसमें इस योजना के तहत ऋण राशि और किस्तें जो है वो, जैसे पहला लोन 10,000 का, दूसरा लोन जो है अगर पहला आप समय पर चुका देते हैं तो दूसरा लोन आपको 20,000 रुपये तक का मिलेगा और उसके बाद जो है तीसरा लोन आपको 50,000 तक का मिलेगा। और इसके अलावा ब्याज सब्सिडी की बात करें तो समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है जो सीधे उनके खाते में ट्रांसफर होती है। डिजिटल प्रोत्साहन की बात करें तो डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रति माह 100 रुपये का कैशबैक भी मिलता है। जी हाँ, अगर प्रति माह जैसे 100 रुपये मिल रहे हैं तो सालाना 1200 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। और इसके लिए पात्रता की अगर हम बात करें कि पीएम स्वनिधि योजना के लिए कौन पात्र है, कौन जो है इसका, इस योजना का लाभ उठा सकता है, तो शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पथ विक्रेता यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, ठेला लगाने वाले या फिर छोटी दुकान जो दुकानदार जो होते हैं, जो नगर निकाय द्वारा प्रमाणित हैं, वो जो है इसके पात्र होते हैं। और इसके लिए आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं पीएम स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से। जो भी योग्य व्यक्ति है वो पीएम स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से या फिर नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए हम कह सकते हैं कि आवश्यक दस्तावेज जो है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, और बैंक खाता, इन सब का विवरण आपको देना होता है। तो इसके लिए जैसा कि हमने बताया कि पहला लोन जो है वो 10,000 का है और जो पहला लोन अच्छे से चुका देता है उसे बाद में दूसरा लोन 20,000 का मिलता है और इसी तरह से फिर तीसरा लोन जो है वो 50,000 का मिलता है। तो इसीलिए सरकार द्वारा ये जो पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है तो अधिक से अधिक जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं या फिर छोटी दुकानदार हैं वो इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और क्योंकि अब ये मार्च 2030 तक इसे बढ़ा दिया गया है तो अपने को स्थिर करने के लिए, अपने को ऊंचा उठाने के लिए, अपनी दुकान को या अपनी छोटी सी रेहड़ी को यूँ कह सकते हैं कि अच्छा चलाने के लिए जो है आप ये लोन जो है अवश्य लें और इसका लाभ जरूर उठाएं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात बता दी आपको, आपको पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कुछ जानकारी दे दी, पर अब हम बात कर रहे हैं हमारे युवाओं के बारे में। जी हाँ, क्योंकि युवा जो है हम सब जानते हैं कि देश का भविष्य है और अन्न की बर्बादी यानी कि फूड वेस्ट जो है इसको रोकने में युवाओं की पहल और जो सहयोग होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, युवा वर्ग है वो अपनी ऊर्जा और डिजिटल जागरूकता के माध्यम से भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं, भूखमरी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं में बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं अन्न की बर्बादी की, क्योंकि कई बार जो है हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसके लिए जो है युवा है वो जागरूकता अभियान शुरू कर सकते हैं। युवा सोशल मीडिया के माध्यम से उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, जैसे जितने भी नारे हैं ये इनके थ्रू जो है ऐसे अभियान चला सकते हैं, इनको वायरल कर सकते हैं। और इसके अलावा बचे हुए भोजन का सदुपयोग, युवा घर और हॉस्टल में बचा हुआ खाना ज़रूरतमंदों तक बांटने या उससे नए व्यंजन बनाने की पहल भी कर सकते हैं। जी हाँ, और इसके लिए युवाओं का सहयोग होना, योगदान होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा स्मार्ट खरीदारी और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो युवा पीढ़ी सुपरमार्केट या ऑनलाइन ऐप से ज़रूरत के हिसाब से ही राशन खरीदने की आदत डाल सकते हैं। और ये शक्ति जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक युवाओं में ही होती है, कि युवा वर्ग है
उनमें ही ये ऊर्जा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो दुनिया चल रही है वो डिजिटल की है, तो डिजिटल दुनिया के माध्यम से जागरूकता जो है वो युवा बहुत जल्दी जो है फैला सकते हैं, बहुत जल्दी उठा सकते हैं कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि अपने अगर आप सोचिए जितना आप वेस्ट कर रहे हैं उससे किसी दो या तीन जनों का अगर पेट भर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भूखमरी कितनी बड़ी यूँ कह सकते हैं कि समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए जो है ये पहल जो है युवा उठाएं, अगर युवा दायित्व लें कि अन्न की बर्बादी को हम रोक लेंगे, तो ये बहुत ही बड़ी पहल है। और दोस्तों अन्न संरक्षण में भी हम कहें कि युवाओं का बहुत बड़ा सहयोग रह सकता है। जी हाँ, एनजीओ के साथ जुड़ना, युवा है वो सामाजिक संगठनों के साथ मिल करके शादियों में पार्टियों में जा सकते हैं जहाँ पर बहुत खाना वेस्ट हो जाता है, तो वो जो बचा हुआ भोजन होता है, अतिरिक्त जो भोजन होता है उसे वो इकट्ठा करके गरीब बस्तियों में पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि युवा जो है फूड शेयरिंग ऐप या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके अतिरिक्त भोजन को नष्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि फूड शेयरिंग ऐप के माध्यम से लोग जो है अगर आप उनका खाना बच रहा है तो वो उसके थ्रू ऐप के थ्रू जो है अपना खाना किसी को भिजवा सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, तो इससे जो अतिरिक्त भोजन होगा वो वेस्ट भी नहीं जाएगा और उसका जो है हम कह सकते हैं कि यूज़ हो जाएगा, और यूज़ भी नहीं किसी का पेट भर जाएगा, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में फूड ऑडिट यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में कैंटीन के भोजन की बर्बादी को ट्रैक करने के लिए युवा टीमें जो हैं वो बना सकते हैं। और इस तरीके से जो है अन्न की बर्बादी रोकने के लिए युवा चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये अभियान चला सकते हैं, डिजिटल से ऐप के जरिए लोगों को जोड़ सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं और अन्न की बर्बादी होने से पूरी तरह से बचा सकते हैं। तो इसीलिए युवाओं को ये पहल उठाना बहुत ज़रूरी है और इसे यूँ कह सकते हैं कि अन्न की बर्बादी रोकने में अगर सबसे बड़ा कोई सहयोग कर सकता है, कोई हाथ बढ़ा सकता है तो वो है युवा। चलिए दोस्तों अब हम फिर से चल रहे हैं संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे बेटा फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दोस्त मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भीड़े भी बाता, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

Gracias. Gracias. Gracias.

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे दी बात।
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा साल किया बैठा हो
2: काई करू था हूँ बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोरो भी कौन।
1: आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया काकी साहब, ये कार्यक्रम सुनन से मिलसी पशुपालन से जुड़ी होगी सबरी समस्या का समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया घिनेरी बातिया कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंशी भाई रा भी
4: मोकला मोकला
5: राम राम
4: राम राम बंशी भाई राम राम
5: राम राम हरखू भाई राम राम।
4: देखो आज गुरुवार है सिंजारी देखो कितनी बजगी
5: 5:30 बजगी
4: आज देखो अब अडीक है सगला पूरे प्रदेश राज्य का भी पशुपालक भाई है।
5: हाँ।
4: आज सोचे गई आज चर्चा किन बात पर उसी चौपाल में
5: यार देखो सा जिज्ञासा नहीं सगला रे मन रे मायने रे वे।
4: हाँ।
5: और खाली राजस्थानी जी का अपना लोग है भाई है।
4: हाँ।
5: उनारी नहीं।
4: हाँ।
5: राजस्थान सुबारे भी तो लोग इन्होंने सुने है।
4: हाँ भाई हमें तो देखो मोबाइल माध्यम हाँ। तो आखो विश्व सुन सके
5: एकदम
4: और FM बैंड 101.6 MHz पर बस। पर एक बात बताओ कल दिन भर डागले पर लग्योड़ा झाड़ू लेवड़ो कहीं कर रिया था
5: हरकू भाई थे तो पूरी कहने की जानकारी रखो हर आदमी री कौन कहीं करे। खैर हूँ आपने बता दू कि भाई देखो सा हूँ कर रहे हो तो साफ सफाई
4: मानसून री तैयारी कर रिया था।
5: हाँ भाई देखो सा मानसून आने वालो है बरसात आने वाली है तो उनसे पहली आप अपने घर री साफ सफाई कर लेवा आस पास से री सफाई कर लेवा बीमारियां सुन आप ही तो बच सा
4: बिल्कुल सा। और जो पानी है वो है अनमोल।
5: हाँ।
4: ओ वर्षा जल अगर आप डागला साफ उसी छत साफ उसी डबो साफ सुथरो पानी आप कुंडी तक पूगी और वो आप पूरे बरस पी सका और पीवे लोग
5: पीवे भी है भाई आपने देखो गांव रे मायने तो वही तो साधन है पानी बचत रो।
4: हाँ और कई जना देखो पानी ने यही व्यवाद है वो अच्छो को नहीं सा जितो आप इन्हें बचा सका। देखो पानी है सोनो अगर मानो तो
5: एकदम सच्ची बात है सोने से भी महंगो है।
4: हाँ।
5: तो भाई बाकी री चीजें है जिकने तो आपा बना सका पर पानी ने बना सका की
4: नहीं नहीं सर। हाँ। हमें देखो सरकार का प्रयास है नहीं हर घर नल।
5: हाँ, हर घर नल
4: पानी पूगे पर फिर भी जिकी चीज आपने आराम से मिल रही है नहीं कोई भी चीज अगर आपने आराम से मिल रही है चाहे पानी हो चाहे बिजली हो बेरो आपने सदुपयोग करना है।
5: हाँ दुरुपयोग तो भाई करना ही नहीं चीज
4: है कमरे से निकलिया लाइट जगरी तो जगरी है ना ना ना जी निकल रहे हो तो पहलो काम आपने कहीं करना है
5: खटको बंद कर दो।
4: हाँ ओ अगर छोटो सी काम है वो आप ध्यान रखता है तो आप बचत खाली आप ही को नहीं आ देश भी बचत है और जे आपन घर में पानी रे नल है नहीं आप वो भी आप देख लेंगे खुल्लो तो को नहीं है फालतू बह तो नहीं रही है इन छोटी छोटी बातें ध्यान रखता नहीं तो आज की बचत है नहीं आ महा बचत है आने वाली पीढ़ी वास्ते बचत है।
5: आज की बचत है नी वो काल रो आप खुद रो जीवन उसी।
4: हाँ देखो सगड़ा न सिला रिया सामे जी का देखो कितना जना बैठे राम राम हाँ बैठो बैठो सा तो अब आप बताओ आज चर्चा किन विषय पर कर से हो।
5: देखो सा यही है कि अपना जगह पशुपालक भाई है भाई बड़ा ही सजग है और अपने कागजिया लिखे कि भाई इन इन विषय पर जानकारी चाहे तो मिथक हुआ करे अपने समाज रे मायने पशुआ से जुड़ी तो उन बाबत जानकारी दो और कई लोग बाग में कि भाई टीकाकरण कई हुए इन बाबत जानकारी दे रहा हो सा और कई जना लिखे कि भाई टीका लगाने से फायदे हुए नहीं हुए ऐ जानकारी आप पूछो
4: टीकाकरण ले पर अभी कई मिथक है ऐसा है नहीं
5: बिल्कुल है
4: तो जन विषय कहीं बनियो के पशुओं में आए टीकाकरण मिथक साच और लाभ
5: विषय बन गयो आज रो
4: तो आज मैं चौपाल में जानकारी देव सर आमंत्रित करिया है सहायक आचार्य राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सुपधारे डॉक्टर राम कुमार जांगीर। तो डॉक्टर राम कुमार जी आप चौपाल में घन घन स्वागत है आपने नहीं करा
5: राम राम, राम सा
4: राम राम सा। और अब देखो आज आप बातचीत करिए पशुओं में टीकाकरण मिथक साच और लाभ इन विषय पर आज डॉक्टर साहब आपसू मैं बातचीत कर सर आपसे उम्मीद करा कि आप मैंने अच्छी अच्छी जानकारी दे सो
5: और इन सर ये देखो सर खूब भाई ठीक हो तो पहले सवाल हूँ कर लूंगी डॉक्टर साहब।
4: हाँ हाँ बिल्कुल।
5: हाँ तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताओ कि पशुओं के खातिर टीकाकरण जरूरी क्यों है और किन भात रोगों से सुरक्षा दिया करे इन बाबत महाराज का पशुपालक भैया उन्होंने सगला ने आप जानकारी दिलाओ सर।
6: जैसा कि सभी पशुपालक भाई अनुभव करते रहते हैं कि पशुओं को समय समय पर अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका उपचार संभव होता है और उससे पशुपालक को अधिक नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ एक संक्रामक बीमारियां इतनी गंभीर होती है कि वह पशु की जान भी ले सकती है और पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के लिए गलगोटू हुआ, फड़किया हुआ, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती है और पशुपालक के पास उपचार कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वैक्सीनेशन करके इन बीमारियों को रोका जा सकता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। वैक्सीनेशन या टीकाकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पशु के शरीर को किसी विशेष रोग से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है और वैक्सीन रोग उत्पन्न नहीं करती बल्कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती है। सामान्यतः टीका लगने के 15 से 30 दिन के बाद शरीर में उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी या स्मृति कोशिकाएं विकसित होती है और ये एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं कुछ महीनों या वर्षों तक बनी रहती है। भविष्य में यदि वही रोगाणु जिसके लिए वैक्सीनेशन हो चुका है शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र इन एंटीबॉडी या स्मृति कोशिकाओं की सहायता से उसे तुरंत पहचान कर प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर देता है। परिणाम स्वरूप अधिकांश मामलों में या तो संक्रमण नहीं होगा या होगा भी तो बीमारी बहुत हल्के रूप से रहेगी। तो इस प्रकार से टीकाकरण पशुओं को स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी, सुरक्षित और किफायती निवारक उपाय है। इसका उद्देश्य बीमारी का उपचार करना नहीं बल्कि बीमारी से होने से पहले उसका बचाव करना है।
4: जी जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि टीकाकरण क्यों जरूरी है। टीकाकरण एक वैज्ञानिक पद्धति है और एक स्वस्थ राखण सारू और टीकाकरण होया करे रोगासु लड़ने की क्षमता बढ़ाया। हाँ, एक डॉक्टर साहब कई महाराज पशुपालक भाई कह करे जे पशु स्वस्थ है तो फिर टीकाकरण क्यों?
6: स्वस्थ पशु में टीकाकरण करवाया जाता है वैसे।
4: अच्छा।
6: क्योंकि जितना ज्यादा पशु स्वस्थ होगा उसकी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम है उतना ही अच्छा काम करेगा और जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या करता है उसमें एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं विकसित करता है।
4: जी।
6: अगर पशु पहले से बीमार है या बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसका प्रतिरक्षा प्रणाली वो अपेक्षित रूप से कार्य नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं बन नहीं पाएगी तो उससे ये होगा कि टीकाकरण का प्रभाव भी कम हो जाता है, वो प्रभावशाली नहीं रह पाता। तो इसलिए प्रत्येक पशुपालक को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि टीका हमेशा स्वस्थ पशु में लगाया जाता है ताकि भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रह सके।
4: जी जी, तो थारा कहने का मतलब वो है कि पहला सुन चौकीदार मायने खड़ा कर दे, जे चोर आवे तो वो पहला सुन सक्षम है ये सुन लड़न वास्ते, और जे अस्वस्थ पशु है पछे टीकाकरण करा तो भी फायदा तो जल्दी मिले वो नहीं।
6: अस्वस्थ पशु में उसकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली होती है वो इतनी सक्रिय नहीं होती।
4: जी।
6: सुरक्षा उसमें मिलेगी, अस्वस्थ पशु उसमें सुरक्षा मिल सकती है पर इतनी अच्छी सुरक्षा नहीं मिलेगी जितनी स्वस्थ पशु में मिलेगी।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर।
5: जी हाँ, डॉक्टर साहब बताओ कि भाई रोगाणु से लड़ने की शक्ति है जिसको टीकाकरण दिया करे, अब फिर भी डॉक्टर साहब लोग बात क्या करे कि टीको लगाने के बाद पशु बीमार पड़ जाया करे, तो इन मिथक माए कितनी सच्चाई है इन बाबत भी आप जानकारी दो सर।
4: हाँ।
6: यह एक भ्रांति है। अधिकांश टाइम में क्या होता है वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित रहती है। कुछ पशुओं में क्या होता है वैक्सीन लगने के 24 से 48 घंटे के भीतर हल्का बुखार, सुस्ती, भूख में हल्की कमी, इंजेक्शन वाली साइड पर थोड़ी सी सूजन आ सकती है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह इस बात का संकेत है कि पशु की प्रत्यक्ष रक्षा प्रणाली टीके के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। ऐसे लक्षण अधिकांश मामलों में बिना किसी विशेष उपचार के अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ मामलों में किसान को ये लगता है कि टीकाकरण के बाद पशु में तेज बुखार आ रही है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, अत्यधिक सूजन या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं से संपर्क कर सकते हैं, पर टीकाकरण एकदम सुरक्षित होता है। टीकाकरण से होने वाली सामान्य और अस्थायी प्रतिक्रियाओं से घबराने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में टीकाकरण न कराने का जोखिम टीका लगाने के बाद होने वाली सामान्य प्रतिक्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक गंभीर होता है। इसलिए अपने सभी पात्र पशुओं को समय पर टीकाकरण कराना आवश्यक है।
4: बिल्कुल सर, देखो बात तो खरी है कि समय पर अगर टीकाकरण करा लेवा तो आप पशु है वो स्वस्थ रहे। और अब डॉक्टर साहब बात आवे कि आपने क्षेत्र मायने किसा किसे महताऊ रोग है जिन्हारे खातिर नियमित टीकाकरण की जरूरत होया करे या जरूरी मानी जाए करे।
6: हमारे क्षेत्र में गाय और भैंसों के लिए खुरपका और मुंहपका, गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर, लंपी स्किन डिजीज तथा निर्धारित आयु की मादा बच्चियों में ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार भेड़ और बकरियों में पीपीआर या फड़किया, एंट्रोटॉक्सेमिया तथा प्रभावित क्षेत्रों में सिक पॉक्स, गोट पॉक्स के विरुद्ध नियमित टीकाकरण की सलाह दी जाती है।
4: और देखो पेन कॉपी में लोग ले बैठा है वे भी लिखता जा रहे हैं पॉइंट के चीज नहीं है चीज अपने ध्यान रखनी है।
5: हाँ, और देखो सर आ सजग रहनी है। हाँ। आई अपने कई करे कि अपने बड्ढा है अपना जो पशुधन है उन्होंने बचाया और इनरो सूचक हो है इनरो देखो सबूत हो है कि देखो सरिता भाई है जो कागज में लिखकर भेजी है। डॉक्टर साहब पूछे कि भी क्या गर्भवती मादा पशु छोटा बछड़ा या मेमना रे भी टीको लागिया करेगी जे लागी जाए अगर बिहार टीको तो किसी किसी बात रो ध्यान है जो माने राख लो चाहिए
4: भाई। प्रश्न तो सरिता भाई अच्छा पूछे आप बताओ डॉक्टर साहब जानकारी दो।
6: असल में गर्भवती पशुओं और छोटे मेमनों का भी टीकाकरण किया जा सकता है लेकिन यह निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम और पशु चिकित्सा की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए
5: जी।
6: गर्भवती पशुओं में केवल वही वैक्सीन लगाई जानी चाहिए जो गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित मानी जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था के अंतिम चरण में पशुओं को अनावश्यक तनाव लंबी दूरी तक ले जाने और अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचाना चाहिए इसलिए इस अवधि में टीकाकरण का निर्णय हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए। छोटे बछड़ों और मेमनों में जन्म के तुरंत बाद टीका नहीं लगाया जाता क्योंकि शुरुआती दिनों में माँ के पहले दूध से प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। जैसे जैसे यह सुरक्षा कम होती है निर्धारित आयु और टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार वैक्सीन लगाई जाती है
5: जी।
6: अधिकांश रोगों में छोटे मेमनों में 3 से 6 महीने की आयु के बीच ये टीके लगाए जाते हैं पर कुछ एक टीके होते हैं जो अर्ली एज में भी लगाए जा सकते हैं जो टिक वगैरह जो उनसे बचाव वाले टीके एक्टोपैरासाइट इंड्यूस्ड जो डिजीजेस होते हैं उनके लिए आप 1-2 टीके ऐसे होते हैं जो लगाए जा सकते हैं अर्ली एज में भी। वो क्रॉस ब्रीड के लिए होते हैं सिर्फ
5: अच्छा
6: इंडिजिनस के लिए नहीं मतलब देसी ब्रीड के लिए उनको जरूरी नहीं उनका महत्व नहीं था
5: जी जी। तो सरिता भाई जो आप सवाल पूछे भाई आप आशा करा कि भाई उन्होंने वो जवाब मिल गयो और उन्होंने साथे साथे आपना जो पशुपालक भाई दूजा भी है उन्होंने भी इनकी जानकारी मिल गई उसी
4: बिल्कुल मिल गई। सरिता भाई ने जी मुस्कुराहट इन बात बता दी के बाद संतुष्ट है जवाब से हाँ। तो अब एक डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँ कि अलग अलग पशु जिया गाय है भैंस है बकरी है भेड़ है इन सारू टीकाकरण जो वार्षिक कार्यक्रम है वो किन बात होना चाहिए।
6: असल में टीकाकरण का जो कार्यक्रम होता है वो पशु की प्रजाति आयु क्षेत्र में प्रचलित रोगों तथा सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में सामान्यतः गाय और भैंस के लिए खुरपका और मुंहपका की वैक्सीन होती है प्रत्येक 6 माह के अंदर होती है वर्ष में 2 बार बरसात से पहले की जाती है। इसी प्रकार गलगोटुआ उसकी भी साल में 1 बार वैक्सीन होती है मानसून से पहले अप्रैल जून में। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर जिसे लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है ये प्रभावित क्षेत्रों में 1 बार कर वैक्सीनेशन की जाती है। लंपी स्किन डिजीज हुआ इसकी वर्तमान में 2 साल में 1 बार वैक्सीन लगती है। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस हुआ ब्रुसेलोसिस के लिए साल में जो छोटी बच्चियां होती है उनको 4 से 8 माह की अवधि में लगती है सिर्फ बच्चियों में लगती है ये वैक्सीन। इसके अलावा भेड़ और बकरियों में पीपीआर के लिए 3 वर्ष में 1 बार वैक्सीन लगती है सरकार के दिशा निर्देश अनुसार। इसके अलावा एंट्रोटॉक्सिमिया फड़किया के लिए वर्ष में 1 बार वैक्सीन लगती है वो भी बरसात से पहले और सिप और गोट पॉक्स के लिए वैक्सीन लगती है। तो ये इतनी वैक्सीन हमारे जो सिप और गोट या जो गाय और भैंस है इनके लिए अभी अपने राजस्थान क्षेत्र में लग रही है। तो इनका कार्यक्रम सरकार के दिशा निर्देश अनुसार चलता है सर
4: जी। राजस्थान सरकार का दिशा निर्देश है टीकाकरण कार्यक्रम चालू करें और आपने वीर माने भागीदारी निभावनी चाहिए। आप जिका भी पशु है जिका समय पर जो टीका लगावना है बने अपने समय पर अस्पताल जाकर अपने टीको लगावनो जरूरी है और लगावनो भी चाहिए।
5: और अब जरूरी कहीं है कि बताओ थे
4: जरूरी तो डॉक्टर साहब का टीकाकरण जरूरी है
5: तो वो तो भी समय आवे जब लागी लगानो भी चाहिए पर अब आरी बात करा अब आजरी बात करा
4: मनोरंजन नो टीको चाहिए। तो भैया वंशी भाई क्या है कि गीतर लो सुना दियो तो आप से सुनो एक मीठो मीठो सो गीतर।

0: तो भाई आवार आप सुनियो एक मीठो मीठो सो गीत लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीनेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेड़ा आपसे सुन दिया हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल प्रस्तुति धीनेरी बातें। और आज अपन ने जानकारी दे सर पधारे है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर राम कुमार जांगीर। और आज आप बातचीत कर सा पशुओं में टीकाकरण मिथक सांच और लाभ विषय पर।
2: भाई देखो सा अपनो जो को काम है वो है मिथक जितना भी है उन्होंने दूर करने रहो। और उन सारो आवे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अबे मारो जो को आगलो सवाल है वो आपसु ओ है कि जे कोई पशु ने तय समय माथे टीको नहीं लगा पावा अगर जे तो उन बेड़ा पशु पालक ने काई करनो चाहिए इन बाबत आप जानकारी दे सा।
3: यदि किसी कारणवश निर्धारित समय पर टीका नहीं लग पाया है वो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बिना देर किए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु चिकित्सक पशु की आयु, टीकाकरण का पिछला रिकॉर्ड, टीका छूटने की अवधि को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेता है कि केवल छूटी हुई खुराक लगानी जरूरी है या टीकाकरण का कार्यक्रम पुनः प्रारंभ करना है। इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के स्वयं कोई टीकाकरण संबंधी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखें कि टीकाकरण में अनावश्यक देरी होने पर पशु

0: कम हो, पका हुआ गलगोटू हुआ, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा बुखार हुआ तथा अन्य संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए यदि किसी कारण से टीका छूट जाए तो उसे यथाशीघ्र पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरा करना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपाय है।
1: बहुत ही महत्व जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब एक मिथ कहना या भ्रांति है कि क्या करे है कि पशुपालक के देसी नस्ल का पशु है भी टीका लगाने जरूरत ही को है नहीं। आप बात कितनी सही है, इन बार थोड़ी बहने जानकारी दो साहब।
0: यह धारणा सही नहीं है। असल में संक्रामक रोग नस्ल देख कर हमला नहीं करते। यह भी सही है कि कुछ परिस्थितियों में विदेशी या क्रॉसब्रीड नस्लों के पशु स्थानीय जलवायु या उनके जेनेटिक मेकअप पशु प्रबंधन प्रणाली के साथ पूरी तरह अनुकूल न होने के कारण कुछ लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देसी नस्ल के पशु सभी रोगों से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। जैसे खुरपका, मुंहपका हुआ, गलगोटू हुआ, लंपी स्किन डिजीज हुआ, पीपीआर हुआ, ब्रुसेलोसिस हुआ और रेबीज हुआ, ये ऐसे संक्रामक रोग हैं जो किसी भी नस्ल के पशु को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगा कि देसी नस्ल का होना रोगों से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। पशु की वास्तविक सुरक्षा समय पर टीकाकरण, संतुलित पोषण और अच्छे प्रबंधन से ही सुनिश्चित हो सकता है।
1: जी साहब, देखो चर्चा करा जाने मिथ टूटे
2: है नहीं, यहाँ पर तो काम ही हुई है कि ज्ञान है देखो डॉक्टर साहब ने माध्यम तक उगा। और डॉक्टर साहब जी थे आप बताए कि टीकाकरण है बहुत जरूरी हुई है सगला पशुओं ने खातर, तो टीकाकरण री बेड़ा लगावती बेड़ा और उनारे बाद रे मायने किनी किनी बात रो ध्यान रखना चीजे इन बाबत भी तो महाराज का पशुपालक है उन्होंने आप जानकारी दियो साहब।
1: बिल्कुल,
0: टीकाकरण हमेशा प्रशिक्षित पशु चिकित्सक और पशु विभाग के अधिकृत कर्मचारी से ही करवाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि वैक्सीन सही तापमान अर्थात कोल्ड चेन में सुरक्षित रखी गई हो। टीका केवल स्वस्थ पशु को लगाना चाहिए। यदि पशु गंभीर रूप से बीमार है तो पहले उसका उपचार कराना उचित है। टीकाकरण के बाद पशु को पर्याप्त आराम, स्वच्छ पानी, संतुलित आहार उपलब्ध कराना चाहिए और अगले 24 से 48 घंटे तक उसकी निगरानी करें। इंजेक्शन वाली जगह पे हल्की सूजन, हल्का बुखार, कुछ समय के लिए सुस्ती, सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है और सामान्यतः स्वयं ठीक हो जाती है। लेकिन यदि पशु को तेज बुखार है, सांस लेने में कठिनाई है, अत्यधिक सूजन है, कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे रहा है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के दुष्प्रभाव वैक्सीन लगने के बाद होते हैं। इसके अतिरिक्त बेहतर प्रतिरक्षा के लिए पशुओं को नियमित कृमिनाशक और संतुलित पोषण और स्वच्छ आवास भी अत्यंत आवश्यक है।
1: जी साहब, देखो छोटी सी बात सुई एजगा मिथक है भ्रांति है टूट जाए करे। और अब एक डॉक्टर साहब बताओ कि सरकार द्वारा भी कोई निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया करे नहीं, जे चलावे तो हमारा पशुपालक भाई भी लाभ क्या उठा सके।
0: भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत खुरपका, मुंहपका हुआ, लंपी स्किन डिजीज हुआ, ब्रुसेलोसिस हुआ तथा कुछ अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम करना उनका उद्देश्य है। तो पशुपालक भाइयों को इन जो योजनाएं हैं इनका लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय या ग्राम पशु पंचायत, पशुधन सहायक अथवा पशुपालक विभाग से संपर्क करना चाहिए। कई स्थानों पर विभागीय टीमें गांव-गांव और घर घर में जाकर टीकाकरण करती है, तो हमें उस टाइम उनका टीकाकरण जो टीम है उसका सहयोग करना चाहिए और टीकाकरण के बाद उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में अगली खुराक समय पर लगाई जा सके। पर किसान को जो टीकाकरण करने वाली जो टीम है उसके साथ कॉन्टेक्ट करना ही सबसे उपयोगी जो तरीका है कि उसको टीकाकरण जो परियोजना है उनका लाभ मिल सके। उनकी जानकारी होना सबसे इम्पोर्टेंट है।
1: भाई आपने भी देखो जागरूक होने की जरूरत है कि आप गांव में जो टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है तो आपने बढ़ चढ़े हिस्सो लेने, आपने जानकारी लेने के भाई आप गली मायने कद आई और आपने किसो टीको लगवाने। फिर डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण बात बताई कि आपने लिखना भी है कि वो टीको किसो लगे और कद लगे ताकि अगले टीको जब भी लगाए भी वक्त आपने ध्यान में रहे कैसा आज वो टीको लगे हम इतना दिन बाद में इतना महीना बाद में वो टीको लगना है
2: पशुधन भी तो एक व्यापार है। उन्होंने मायने भी तो आपने लिखो जो राखनो चीजे कि भाई किसो पशु है जो स्वस्थ है, कद टीको लगायो, कद वो बीमार पड़ियो, कद नहीं पड़ियो, तो ये जानकारी उसी उनसे भी तो आपने लाभ मिल सी।
1: बिल्कुल साथी को खाली व्यापारी बात ना करो, स्वास्थ्य की भी बात करो, स्वास्थ्य वीरो भी लिखा पड़ी जरूरी है। टीका लगावन गया भैया वो पहलो टीको लागो दूजो लागो तो एक कागज मायने लिखो ई महीना वो टीको लागने फिर इतना महीना बाद वो टीको लागना
2: है। भाई सीधी सी बात आई है कि भाई बोली री बात या सुनी हुई की बात है बात हो सके आप भूल जावा पर लिखित रे मायने हो सी नहीं आप जद भी कभी भी देख सका।
1: बिल्कुल सर,
2: भाई देखो सर आपा तो प्रयास करियो कि भाई घनकरा जका विषय है बातना है प्रश्न है भाई डॉक्टर साहब से पूछा।

0: सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वस्थ पशु ही समर्थ पशुपालक, सुरक्षित परिवार और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपने कि स्वस्थ पशु ही समृद्ध पशुपालक है और सुरक्षित परिवार और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है सर।
2: बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब बात बताइए भाई।
1: और अब डॉक्टर साहब तूफान बात पेज की मारे माथर माने नोट भी कि रोग वनरो इंतजार ना करो। के रोग उसी पछे आप टीकाकरण करा सा नहीं सा आ जागरूकता पर मन में होनी चाहिए और लिखा पटी भी होनी चाहिए कि टीको कद लागे और अगलो टीको कद लाग सी। तो देखो टीकाकरण से जुड़ी आज अपने बहुत चीज की भ्रांतियां मिटी और महत्वपूर्ण अपने जानकारी मिली। तो हमें देखो बखत इशारों करने लाग गया है,
2: हमारी कदर तो भी आपने करनी।
1: बिल्कुल सर, तो पशुपालक भाया मैं आपने बता दूं आज चौपाल में जानकर दी उन सरू पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर राम कुमार जांगीर और आज आप बातचीत करी पशु हमारे टीकाकरण मिथक साच और लाभ विषय पर। तो डॉक्टर राम कुमार जागीर साहब आप चौपाल में पधारे और हमारे पशुपालक ने बहुत ही महत्व जानकारी आप दी, इन सारों में आपने देवा धन्यवाद और करा
2: राम राम सर।
0: राम राम सर।
1: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीने री बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती पुनीत बिश्नोई ने, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराव सा घणान घणा राम राम सा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना साल किया बैठा हो।
5: काई करूदा हूँ बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और फिर चीचा भी कौन।
4: आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब ये कार्यक्रम सुनन से मिलसी पशुपालन से जुड़ी होगी सबरी समस्या का समाधान।
3: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारी सांध्य सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे इवनिंग न्यूज, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 11 बजे श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। रात्रि 10 बजे श्रोता सुनेंगे राजस्थान दर्शन, जिसे हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:05 पर श्रोता सुनेंगे रामचरितमानस। आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे रामचरितमानस का क्रमांक 128। स्वर है भूपेंद्र सिंह का। शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम किसान वाणी।

शाम 6:15 का समय होगा, भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा वंदना। रात्रि 8 बजे श्रोता लुत्फ उठा सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। रात्रि 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई गजल। रात्रि 9:15 का समय होगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारी सांध्य सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं लीजिए सुनिए रामचरितमानस।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारे संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गई और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। पांच घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

अभी श्रोता सुन रहे थे रामचरित मानस। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

0: Marisa
1: महाराज गजानंद आओ जी।

जियो रामा केसर तिलक लगावो जी महाराज गजानंद आवो जी मारी सभा।

0: 我的小房每人都快乐笑，我买的小房每人都快乐笑。
1: महाराज गजानंद आवो जी मारी सभा में रंग बरसावो जी
0: महाराज गजानंद आवो जी मारी सभा में रंग बरसावो जी महाराज गजानंद आवो जी मारी सभा में रंग बरसावो।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM एंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: जरा मुन्ने को संभाल लेना, मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ।
2: देखती हूँ। अरे रे रे, तूने तो बहुत ही कर दी। अरे बेटा, तूने तो सारे हाथ पांव सब सान दिए।
1: अरे मुन्ने के दादाजी।
3: अरे क्या है?
1: जरा एक लोटा पानी का तो लेकर आओ।
3: वो बहू कहाँ गई?
1: वो तुम्हारे लिए चाय बना रही है।
3: ठीक है, आता हूँ। ये लो, लो दो।
1: हाँ जरा ठीक से डालो।
3: लो, लो, लो।
1: इधर इधर इधर।
3: ये ले।
1: लो, तुम मुन्ने को संभाल लो, मैं बहू को जाकर भेजती हूँ।
3: अरे लेकिन सुनो तो सही, पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ तो धो लो।
1: क्यों, क्या हुआ? मुन्ने की ही तो पोटी है और मुन्ना तो सिर्फ दूध पीता है, ये कौन सा नाच खाता है?
3: अरे बावली, वैसे बीमारी के कीटाणु तो मल चाहे बच्चे का हो या बड़े का, दोनों में ही होते हैं। इसलिए पोटी साफ करने के बाद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए।
1: ए मेरे राम जी, मैं तो समझती थी कि दूध पीते बच्चे के मल में तो गंदगी के कीटाणु हो ही नहीं सकते। अच्छा हुआ जी जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आती हूँ और बहू को भी समझाऊंगी कि हमेशा बच्चे की पोटी धोने के बाद साबुन से हाथ धोकर ही काम करे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को कल रवाना करेंगे। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम अदालत में पेश करने को कहा। प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी विषयों पर जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी की कल से शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इसे रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित होगी। इस तकनीक में हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाता है। इसके

0: संचालन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई ये रेलगाड़ी भारत की उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाती है। इस रेलगाड़ी के शुरू होने से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इन देशों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इसे हेरिटेज लुक के साथ पुनर्विकसित किया गया है।
1: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्ट्रोल्स है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम हमारे अवेलेबल है और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री हैं, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक एसी वेटिंग हॉल भी है, डिपार्चर हॉल से वो हेलिंग और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेल्टर की सुविधा है। 3 प्लेटफॉर्म है तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से शेड्यूल मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की तारीख बताने के निर्देश दिए। साथ ही आरक्षण लॉटरी का ब्यौरा और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंपने की तारीख बताने को कहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, किंतु ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी का हवाला देते हुए सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने मीडिया को बताया कि मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
2: डिपार्टमेंट्स के, लोकल बॉडीज के हैं, पंचायत के हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि लॉटरी की डेट क्या रहेगी रिजर्वेशन के लिए, और थर्ड जो है इलेक्शन कमिश्नर को, इनको स्टेट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इलेक्शन की डेट बताएंगे। इसलिए 20 तारीख को मैटर की दोबारा सुनवाई होगी। 20 तारीख को ये तीनों डेट्स बताने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए।
0: पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार पंचायत चुनावों को समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास उसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार पूरी तरह से तैयार भी है।
0: राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने चुनाव की शुरुआती तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची निर्माण, मतदान केंद्रों का चयन, रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति और अन्य व्यवस्थाएं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है। अदालत का कहना है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि छात्र इसे आसानी से अपना सके। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार से 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध और असाध्य रोग से पीड़ित कैदियों की जल्द या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए समान तंत्र सुनिश्चित करने के लिए नीति को 3 महीने में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। देश में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए चलाई जा रही उड़ान योजना की अवधि 10 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार ने अगले 10 वर्षों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ये जानकारी नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क

0: योजना उड़ान के तहत संचालित होने वाली एयरलाइंस को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। जयपुर में पहली बार आज विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देने, विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंटों से नागरिकों को बचाने, प्रवासियों के कल्याण, कौशल विकास, पर्यटन और निवेश पर चर्चा की गई। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में ये पहल की गई। विदेश मंत्रालय के सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती रंगनाथन ने बताया कि इस दौरान प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
1: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको प्रॉब्लम्स है उनके सुझाव के।
0: जयपुर के होम्योपैथी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने समारोह में 760 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। बिड़ला सभागार में हुए इस कार्यक्रम में चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट काम करने वाली प्रतिभाओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही चिकित्सा से जुड़ी ज्ञान परंपरा रही है। उन्होंने होम्योपैथी को कारगर चिकित्सा पद्धति बताते हुए इसे अनुसंधान के आदर्श के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री जाधव ने इस मौके पर कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को दुनिया भर में अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।
2: देश में भी आयुष शिक्षा का विस्तार हुआ है, आयुष चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है, अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी शुरू हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए हैं तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ICAR के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों को किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल 386 नई फसल किस्मों और 117 बागवानी किस्मों को विकसित किया गया है।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: राज्य में चल रहे मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अधिकतर हिस्सों में अगले 3-4 दिन बनी रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात के आसार जताए हैं। आज ज्यादातर जगह गर्मी और उमस का असर रहा, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी गई। वहीं 12 में करीब 1.25 घंटा पानी बरसा। इस बीच जल संसाधन विभाग के अनुसार जुलाई महीने में सुस्त मॉनसून के कारण बांधों के पानी की आवक में कमी आई है। प्रदेश के कुल 693 छोटे बड़े बांधों में से 282 खाली हैं, जबकि 404 बांध आंशिक रूप से भरे हैं। इनका जल स्तर भी बीते कुछ दिनों में घटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-1178 00 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को कल रवाना करेंगे। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम अदालत में पेश करने को कहा। प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने के उद्देश्य से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कल से 5 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत की है। अभियान के दौरान जिले की सभी गर्भवती महिलाओं का 100% ANC पंजीकरण, 4 अनिवार्य प्रसव पूर्व जांचें, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान, एनीमिया की जांच तथा नियमित फॉलो अप किया जा रहा है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 104 स्वास्थ्य परामर्श सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा की जानकारी भी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। राजस्थान समान नागरिक संहिता यानी UCC के प्रारूप को लेकर प्रतापगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई रखी गई। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक बी आदित्य तथा जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की मौजूदगी में जन प्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और छात्र छात्राओं ने अपने सुझाव रखे। समिति के सदस्य बसंत सिंह छाबा ने कहा कि प्राप्त सुझावों का गहन विश्लेषण कर समावेशी और पारदर्शी प्रारूप तैयार किया जाएगा। जूनोसिस जागरूकता सप्ताह के तहत जिले के राजकीय GNM प्रशिक्षण महाविद्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में रेबीज, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, लैप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस जैसे पशुजन्य रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। विशेषज्ञों ने पशुओं के नियमित टीकाकरण, स्वच्छता और समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने पर जोर देते हुए आमजन से सतर्क रहने की अपील की। पिछले दिनों जिला प्रभारी सचिव और संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर तथा सुहागपुर पंचायत समिति के केसरपुरा गांव में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, PM स्वनिधि और PM सूर्य घर योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र लोगों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में सहकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत आयोजित कृषक सम्मान दिवस में जिले के प्रगतिशील किसानों, पैक्स अध्यक्षों और समिति व्यवस्थापकों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने किसानों से ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, जैविक खेती, पुष्प उत्पादन और सौर ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार जिले में लक्ष्मण रेखा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ANTF चौकी प्रतापगढ़ द्वारा नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 475 विद्यार्थियों और नागरिकों ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत जिला कलेक्टर ने जिले में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न करवाई। योजना के माध्यम से 75 वरिष्ठ नागरिकों का हवाई यात्रा और 616 वरिष्ठ नागरिकों का रेल यात्रा के लिए चयन किया गया। जिले की सुहागपुरा तहसील के पंडावा गांव में नए 33/11 KV विद्युत ग्रिड सब स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इसके शुरू होने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलेगी तथा प्रतापगढ़ विद्युत वृत्त में ऐसे सब स्टेशनों की संख्या बढ़कर अब 95 हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 जून से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से 5 साल से कम आयु के बच्चों में डायरिया

0: दस्त की रोकथाम, समय पर उपचार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार थीम के साथ आमजन को ORS, जिंक, स्वच्छ पेयजल और हाथों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन उचालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने काल रवाना करेला और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन ने वर्चुअल तरीका जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। राजस्थान हाई कोर्ट, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव रो कार्यक्रम 20 जुलाई ताई अदालत में पेश करण शुरू कहो। प्रवासियों की हिफाजत और भलाऊ जुड़िया मुद्दा माथे जयपुर में पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस रखी जी। और राज्य में घनखर ठोड़ा चौमासारी बिरखा, आवता 3-4 दिन ताई मंदी रहवन रा आसार। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में हाइड्रोजन उचालन वाली पहली रेलगाड़ी ने काल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन रवाना करेला। आ गाड़ी जींद और सोनीपत पीछे चलेला। ये गाड़ी ने हाइड्रोजन गैस ने बिजली में बदलन वाली देशी तकनीक हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलाई चावेला। ये तकनीक बिजली बनावन रे दौरान कार्बन बिल्कुल पैदा नहीं हुए है। आ रेलगाड़ी चलिया पाछे भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका सागे हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलावन वाला देशां री जमात में शामिल हो जावेला। प्रधानमंत्री रो काल ही पंजाब राज जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन देश भर रा और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करण रो कार्यक्रम है। आमाय राज्य रा जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर ये शामिल है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन माथे रखा जावन वाला जलसा में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहवेला। जोधपुर रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव बतायो का करीब 140 करोड़ रुपया रा खर्च जैसलमेर स्टेशन माथे मुसाफिरा सारू नुआ सुविधा मुहैया कराई चिया है।
2: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्फ्रेंस है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम हमारे अवेलेबल है और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री हैं, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक AC वेटिंग हॉल भी है, डिपार्चर हॉल से वो है लिंक और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेल्टर की सुविधा है। पिकनिक प्लेटफॉर्म में तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
1: राजस्थान हाई कोर्ट, राज्य सरकार, पंचायत और निकाय चुनाव रो कार्यक्रम पेश करन रा हुकम दीना है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा री खंडपीठ आज सुनवाई रे दौरान राज्य सरकार और प्रदेश रा निर्वाचन आयोग ने चुनाव करावन री तारीख बतावन रा हुकम दीना। अदालत आरक्षण, लॉटरी रो ब्यूरो और OBC आयोग री रपट सुपन री तारीख बतावन बाबती कहो। ध्यान जोग है कि हाई कोर्ट पहली 31 जुलाई ताई चुनाव करावन रा हुकम दीना हा, पर ओबीसी आयोग री रपट माय मोड़ा रो हवालो देता थका सरकार री ओर चुनाव करावन रो काम शुरू नी करी जियो। वकील प्रेमचंद देवंदा खबर नवीसा ने बतायो कि मामला री अगली सुनवाई 20 जुलाई ने फैला।
3: डिपार्टमेंट्स के, लोकल बॉडीज के हैं, पंचायत के हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि लॉटरी की डेट क्या रहेगी रिजर्वेशन के लिए, और थर्ड जो है इलेक्शन कमिश्नर को, इनको स्टेट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इलेक्शन की डेट बताएंगे, इसलिए 20 तारीख को मैटर की दोबारा सुनवाई होगी। 20 तारीख को ये तीनों डेट्स बताने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए।
1: दूजिकानी पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जोधपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का कहो कि सरकार पंचायत चुनाव एम सरकराम नो तय किन्नो है।
4: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास

0: उसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार के लिए तरह से तैयार भी है।
1: इस राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा चुनावी शुरुआती तैयारियां सारू जरूरी दिशा निर्देश जारी की ना है। वह जिला निर्वाचन अधिकारियों वोटर लिस्टा बनावन मतदान केंद्र रो चयन रिटर्निंग अहलकार री नियुक्ति और दूजी व्यवस्थावा करण सारू कहो। सुप्रीम कोर्ट सगला राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशा ने बुजुर्ग और घना मंदा कैदियां री बगत तू पहली बेगी रिहाई रा बारा माय जरूरी नीति बनावन और लागू करण रा हुक्म दीना है। अदालत देश माय एड़ा मामला माय विचार करण सारू एक सरीखो सिस्टम बनावन सारू नीति ने 3 महीना माय अधिसूचित करण रो हुक्म ही दीनो। देश रा न्यारा न्यारा शहरा बीचे हवाई जहाज उ सफर रो सुबितो मुहैया करावन सारू चलाई जा रही उड़ान योजना री मियाद 10 साल ताई बधा दीरीची है। सरकार आता 10 साल माय 109 हवाई अड्डा और हेलीकॉप्टर उतरण री 200 ठोड़ा विकसित करनो तय किन्नो है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू आज नई दिल्ली माय उड़ान योजना रा बारा माय राखी जी कार्यशाला पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सरकार उड़ान योजना रा तहत हवाई जहाज चलावन वाली कंपनियां ने माली मदद देवन री मियाद 3 वधार 5 साल करण रो फैसलो किन्नो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। जयपुर में आज पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस राखी जी। इनमें सुरक्षित और वैध प्रवासन न बढ़ावो देवन परदेश भेजन वाला फर्जी एजेंटाओं जनता न बचावन प्रवासियों रा भला कौशल विकास सैर सपाटा और निवेश रबारा माय चर्चा करी जी। विदेश मंत्रालय माय सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ही सम्मेलन माय शामिल थिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका रंगनाथन कहो कि कॉन्फ्रेंस माय प्रवासियों री हिफाजत और कल्याण जुड़िया मुद्दा मत जाग जगावन री कोशिश करी जी।
2: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको प्रॉब्लम्स है उनके सुझाव के।
1: जयपुर रा होम्योपैथी विश्वविद्यालय रो दीक्षांत समारोह आज राखी चियो। इनमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव 760 विद्यार्थियों ने उपाधियां देर नवाजा। कार्यक्रम में चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा रा हलका माय बेहतरीन काम करण वाला रो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देर मान करी चियो। जलसा माय विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति कहो कि भारत माय गुजरा जमाना हुई इलाज जुड़ी ज्ञान परंपरा रही है। वह होम्योपैथी ने इलाज रो कारगर तरीको बताता थका अनुसंधान रा आदर्श सागे आगे बढ़ावन री अरज कीनी। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कहो कि होम्योपैथी ने इलाज रा तरीका रा तौर आखी दुनिया में अपनाई ची है। वह नौजवानों बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करावन में योगदान देवन री अरज कीनी। जाधव कहो कि लाडला कुछ वर्षा में देश में जनता री स्वास्थ्य सेवाओं तई पहुंच तेजियों बढ़ी है।
3: देश में भी आयुष शिक्षा का विस्तार हुआ है, आयुष चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है, अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी शुरू हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए है तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एकीकृत कृषि पद्धतियां ने बढ़ावो देवन माथे जोर दीनो है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR रा स्थापना दिवस समारोह में बोल रहा है। चौहान कहो कि किसान और वैज्ञानिकों की मेहनतों खेती बाड़ी रा हल्का में चोखा नतीजा मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ICAR री कोशिशों की सराहना करता थका कहो कि वैज्ञानिकों ने किसानों की जरूरत रे मुताबिक अनुसंधान करनो चाहिए। वह कहो कि देश 376 करोड़ टन खाद्यान्न री

0: आया है। ई बीचे आज घनखर थोड़ा गर्मी और उमस रही। दूजी कानी 12 माए करीब पौन घंटा ताई पानी बरसो। कम बिरखा रे कारण बंधा माए पानी री आवा की थोड़ी कम भी है। राज्य रा 693 छोटा मोटा बंधा मायू 282 रीता है, जबकि 404 बंधा थोड़ा घना भरिया है। जमाई लारला दिना पानी रो लेवल उतरियो है। करौली जिला माए 5 बंधाओं पानी री निकासी रा सिस्टम री आज तकनीकी जांच करी ची। इन दौरान कमांड हल्कारी नहरा माए पानी छोड़न वाला दरूजा री जांच करी जी और गैर कमांड हल्का सारू बनाई जी लिफ्ट प्रणाली रोई कामयाबी सागे ट्रायल करी जियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। ई सारू आप ई सुझाव मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 24 जुलाई ताई भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन उचालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने काल रवाना करेला और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन ने वर्चुअल तरीका जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। राजस्थान हाई कोर्ट पंचायत और निकाय चुनाव रे बारा माए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जुलाई ताई पंचायत चुनाव रो कार्यक्रम अदालत माए पेश करण सारू कहो। प्रवासियों री हिफाजत और भलाऊ जुड़िया मुद्दा माथे जयपुर माए पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस राखी जी। और राज्य माए घनखर थोड़ा चौमासा री बिरखा आवता 3-4 दिन ताई मंदी रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का अपना पसंदीदा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम किसान वाणी।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान मानसरोवर नाला सगला किसान भाइयों को पूजा बेंद्रा घना घना राम राम। देखो किसान भाइयों की आप हमें के खेतों की तैयारी तो पूरी कर चुकी हो, जितने भी काम हो तो आप रोशन निपट चुकी है। अगर कोई जगह ने मिट्टी पौन की जांच करनी होती थी वो भी हो गई है, खड्डा खोद रखा है और यानी आपको कह सकते जो पूर्व तैयारी आगामी तैयारियां हैं वो सारी हो चुकी है और हमें

का किसान भाई जो बाहर बैठा है वो है बरखा रे। मौसम तो रोज बने लेकिन एक भगवान मेहरबान होशे जदरी बात है। खैर कोई बात कोई, लेकिन आप और जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो हमेशा आप और किसान भाई मत है मेहरबान है। वो हमेशा ही किसान और आय न बढ़ाने वास्ते और उन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान करना आर्थिक स्तर को आत्मनिर्भर बनाने वास्ते बहुत ही लाभकारी योजनाओं बना रही है ताकि वो योजनाओं लाभ उठा करके अपना किसान भाई आत्मनिर्भर बन सके। जैसे मैं है कि पीएम किसान निधि योजना, किसान क्रेडिट योजना, फसल बीमा योजना, कई प्रकार की योजनाओं है। तो आप आज थोड़ी देर बारे में चर्चा कर दें कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है और मोए जो भूमि धारक किसान भाई है और परिवारों ने हर एक साल में 6000 राशि यानी कि आर्थिक सहायता चार चार महीने रख दी थ्रू तीन समान किस्तों में मिलिया करें यानी दो दो हजार रुपया चार चार महीने रख दी थ्रू अंतराल से हमारे बैंक खाते में जमा हो गई जो कि वो उपयोग कर सकें। इधर साथ में एक जो सबसे खास योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो किसान भाई वास्ते बहुत ही वरदान है क्योंकि तो अगर आपका किसान भाई कोई कारण से फसलों रो लाभ ले और आपके उत्पादन रो लाभ नहीं ले पावे जो कि प्राकृतिक आपदा हो गई है, कीटों का प्रकोप हो गया है, कोई प्रकार का रोग हो गया है, कई प्रकार की हानि वाली स्थितियाँ हो जाया करी, तो अगर आप पर फसलों ने कोई प्रकार से नुकसान हो गया है और आप पर फायदों को नहीं हो रहे तो इस जगह पर केंद्र सरकार है जो किसान भाई वास्ते पग तोड़ने खड़ी है यानी कि वही पूरी की पूरी भरपाई कर दी उन बीमारों और सुरक्षा रो पूरा कवर प्रदान करिया करें। और एक है किसान क्रेडिट योजना, तो किसान भाई वास्ते आप कैसा यही तरीके से लॉटरी दिखाई है क्योंकि ये माध्यम से किसानों ने बहुत ही कम ब्याज की दर में थे 3 लाख तक रो ऋण मिल जाए और 3 लाख की राशि कुछ कम को नहीं रहनी। इसमें आप किसान भाई कई प्रकार का नवाचार भी कर सके खेती रमोए और आपके जो आवश्यक यंत्र है जो भी चीजों है वो खरीद सके ताकि आपकी खेती में नया आयाम दे सके। इसके साथ में कई प्रकार की योजनाओं बना भी जो कह सको आप जो किसान भाई की मेहनत है, धन है और समय है वो भी बच जावे। जिसके मैं अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके मैं आप बात कर दी बूंद बूंद सिंचाई योजना रही, जिसके मैं आप कर दी ड्रिप योजना, तो ये योजनाओं से आपका किसान भाई है एक तो पहली बात अगर आपको ये योजना ना आप खेत में ले जो ड्रिप सिंचाई में आप लगानी चाहिए तो ये वास्ते आपको सब्सिडी भी मिल सके और दूसरों उन्होंने कौकर चालू करना है कि करना ये बारे में पूरा प्रशिक्षण मिल सके और बाद रमोए ये ज्यादा पाइप पूरा जाल बिछ जावे और काम शुरू हो भी बूंद सिंचाई योजना रो तो आप और पानी की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और मेहनत की भी बचत होगी। तो ये उपयोग आप किसान भाई है वो दूसरी जगह करके अतिरिक्त आमदनी भी कमा सके। एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप और खेत की मिट्टी रो स्वास्थ्य कहड़ो है उसमें कई चीज की कमी है, कई चीज की उसमें आवश्यकता है और कई गुणवत्ता है कि कमी है, सारी बात की जानकारी आप पूरी जांच करने से मिल जाया करे तो आप और किसान भाइयों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनाना चाहिए। और आप किसान भाई तो खैर जागरूक तो है लेकिन यह भी एक चीज है जो किसान भाई वास्ते बहुत ही उपयोगी है जो आप और सरकार और वास्ते मुहैया करवा रही है। इस साथ में एक और योजना है पीएम किसान मानधन योजना, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है उन्होंने तो पेंशन मिलिया करे लेकिन जो दूसरा पूरा लोग है या जब आप किसान भाई बात कर जाए तो उन्होंने वास्ते अड़ी कोई व्यवस्था को नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उम्र मध्य भी पूरी उनको ध्यान रखाया है और ये पेंशन योजना रहते हैं जो 60 साल से बाद व्यक्ति है 60 साल की उम्र जो हो चुकी है उन 3000 रुपया मासिक पेंशन देने का प्रावधान रखे हुए है ताकि वो आपकी सामाजिक सुरक्षा कर सके और आर्थिक रूप से संबल रह सके। एक है कृषि अवसंरचना कोष, ये रमोय किसानों और कृषि उद्यमियों ने कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस या अन्य प्रकार का कृषि ढांचा विकसित करने वास्ते किसान भाइयों ने 2 करोड़ तक वो ब्याज मिल सके और वो भी 3% की ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी के साथ में। तो आप देख जाए किसान भाइयों वास्ते जो सरकार है पग पग मत तैयार है, हर जगह तैयार है, वो मिट्टी की जांच को लेकर के
जितना भी काम है, बीजाई रोपाई सिंचाई छिड़काव करना कटाई करनी भंडारण करना और बाद खेत तक खेत की उपज में बाजार तक ले जाए कि बेचना और सही दाम लेना, हर जगह तक सरकार साथ में है तो किसान भाइयों ने थोड़ा जागरूक होकर ये सब योजनाओं और लाभ उठाना चाहिए ताकि वो आप आर्थिक स्तर नो उन्नत कर सके। आप बातचीत आगे जारी रखो, पहले सुन जाए राजस्थानी लोकगीत।

तो किशन भाई हमारे सुन में आपको बहुत ही बढ़िया राजस्थानी लोकगीत और हमें आपको सुन दिया प्रगतिशील किसान कृष्णा राम जी सुरेश कुमार जी हर्षरी बातचीत।

0: धीरे धीरे और मंडी में दवा तो जरूर बीर पता आवे वो तो वो लाई जाए कोनी 15-20 दिन लगे बा लोगों ने पैसा देना पड़े मजूरों ने कहीं मजूर मिलिया मोड़ा नुकसान हो गयो जो कोई भगवान दी से दाल रोटी लेनी दे।
1: बिल्कुल बापू बा बात तो थोड़ी सही है भगवान जानते हैं जो ले हो लेकिन थोड़ी बात है जे के थोड़ी आगत बावे तो थोड़ो सी ठीक रहा करे हमें कई पाछा तथा जो कोनो थोड़ो बहुत नुकसान हुआ है मनो ये बताओ के आपने पहाड़े हैं मुरबा मुरबाई जे तो मुरबोरी कोकर लोगों डिगे फुहारा बजा के लिया करया कोकरे थो लिया नहीं लिया लिया तो कोकरे आगे की है वो थोड़ो बताओ मनो
0: डिगड़ी तो मई बनाई कचड़ी एक और की टाइम से पानी आवे है कोनी और कहीं आवे तो खड़ा पा बुरी थी पछे ले पावड़ा ले काटो दड़ो बार मैं सरकार जाके दे वन बागाड़ा कोई पौधा बीजा ला रहा देवे तो पर लगाओ तो कोई दड़ो थोड़ो मुड़ो आवे बीजो पानी आवे है कम हो जेड़ो आनो जी जेड़ो आवे कोनी टाइम से फसल ना पानी नहीं मिले तो बस रुके कौन कमड़ो है मोर ये माथे बीजो कम है कौन आगे तो किए के खड़ो में खड़ी दो में जना है मूंग है लेता वो जी तो है कौन हमें नई फसलों है जीरा है कोई तेल है कोई मूंगफली है नहीं नहीं फसल में दवाएं भी देना पड़े ये अपना पार पड़ा कौन तो हमें एक बेमौसम बरसात भी आई मोबाइलों में थोड़ा टबरिया जोया कौन एन टाइम आई कहीं खड़ो लीड़ो तो कहीं माथे है जो बस जीरो थोड़ो काड़ो पोयो इस सब तो हफाए भी झड़ी और खर्चो ही पूरा आवे कौन थे मोरो ये बात तो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बापू बा बात तो थोड़ी सही है कि मैं आजकल समय देखो विज्ञान युग है और विज्ञान युग रे महीनों की है कि थोड़ा टाइमली आप अपना मौसम बाग आला जो बताओ तारी नहीं अपने काजरी आला और कृषि विज्ञान केंद्र आला वो अगर थोड़ा थोड़ा अप टू डेट रहो नहीं तो थोड़ा सी ठा पड़ तो रही बाकी तो देखो।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं कूटल खां।

दूजी एक नाग दूजी नागनी तीजी कंस की माँ तीनों जनों सौ बड़ी नहीं रजा।

तू बटो ये नाड़ी है नाड़ी नहीं जाने तू बटो ये नाड़ी है बीनी छोड़ बेदबी

तू बड़ो नाड़ी नाड़ी ने जाने बेद तू बड़ो नाड़ी बीड़ी छोड़ बेद बीड़ी

बो लावो या वही बेद भारी है नाड़ी नहीं जाने तुम बटो नाड़ी नाड़ी नहीं जाने तुम बटो ये नाड़ी बीड़ी छोड़ बेद भी।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं बीवी नंबर वन, इस फिल्म से, जिसे गाया है अनुराधा श्रीराम और अभिजीत ने।

तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए, जाने तमन्ना।

अभी आपने जो गीत सुना वो हमने लिया था फिल्म गर्व से और इसे गाया था उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में हम आपको सुनवा रहे हैं दिल चाहता है इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है कविता सुब्रमण्यम और शान ने।

श्रोताओं, अभी आपने डुप्लीकेट फिल्म का ये गीत सुना। चौथी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और इस गीत को गाया था कुमार सानू ने। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:30 में है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई गजलें।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई गजलें। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई गजलें आपने सुनी कार्यक्रम सुगम संगीत में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे इवनिंग न्यूज़, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे

0: इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
6: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद।

0: पद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
1: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जाँच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहीं शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।

0: अच्छा
1: तो मालूम है और सबको खबर हो गई।
0: तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।

तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।

ब्रह्मचारी संघ का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आँखियों के झरोके से इस संघ का ये गीत, जिसे गाया है हेमलता और शैलेंद्र।

0: अच्छा तो रोते
1: हेमलता और शैलेंद्र सिंह के गाए हुए अक्षियों के घरों को से इस फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं समंदर खान, सत्तार खान और रमजान के गाए हुए लोकगीत।

केसरियो हजारी कुलिरो फूल हजारी कुलिरो फूल केसरिये को नजर लागे केसरिये को नजर लागे ओ पीरा मारो माटलियो मंदराए Yes.

तेरा लागे कब ना बरुकी शरीरों हजार

ಹಾಗೆ ಮಾರು ಬಾಲಿಗೆ

ભૂરીઓ બાળકા ધણા ખાબેરે રાજ મારો ભૂરીઓ

0: सारे लेते हालो हालो पिया दे दे पलिया ला दे दे पलिया लाए दे दे मन लाए दे लाए दे मन लाए दे लाए दे लाए दे मारी सगी नरगरा पिया दे बागिरा छोटा नी बुड़ा नी ला ला दे
1: मारे नी बुड़ा नी बुड़ा मारे नी बुड़ा नी बुड़ा मारे नी बुड़ा नी बुड़ा नी बुड़ा नी बुड़ा नी बुड़ा

श्रोताओं, राजस्थान का शेखावाटी अंचल अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान, समृद्ध लोक परंपराओं और जीवंत ग्रामीण जीवन के लिए जाना जाता है। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में फैला यह क्षेत्र केवल अपनी भव्य हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति भी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेत के धोरों, रंग बिरंगे परिधानों और सदियों पुरानी रिवायतों से सजी शेखावाटी की संस्कृति आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

बात करें लोकगीतों की तो शेखावाटी का लोक संगीत यहाँ के जनजीवन का आईना है। लोकगीतों में प्रेम, विरह, उत्सव, भक्ति और प्रकृति के विविध रंग दिखाई देते हैं। विवाह अवसरों पर गाए जाने वाले बन्ना बन्नी गीत, गणगौर और तीज के गीत, सावन के झूला गीत और फसल कटाई के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत ग्रामीण जीवन को मधुरता से भर देते हैं। यहाँ की महिलाओं की सामूहिक स्वर लहरियाँ गांव की चौपालों और आंगनों में एक अलग ही वातावरण निर्मित करती है। केसरिया बालम और धरती धोरारी जैसे गीतों की लोकप्रियता ने शेखावाटी सहित पूरे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। शेखावाटी के लोक नृत्य उत्सवों और सामाजिक आयोजनों की शोभा बढ़ाते हैं। घूमर, चरी, गेर और कच्ची घोड़ी नृत्य यहाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य विशेष रूप से शेखावाटी की पहचान माना जाता है। इस नृत्य में कलाकार घोड़े की आकृति धारण कर वीरता और हास्य का अनूठा प्रदर्शन करते हैं। ढोल, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र इन नृत्यों की ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देते हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं जब घूमर नृत्य करती हैं, तो मानो रंगों का चक्रवात सा उत्पन्न हो जाता है।

मरुस्थलीय प्रदेश होने के बावजूद शेखावाटी के लोगों ने अपने जीवन में रंगों का अद्भुत समावेश किया है। पुरुष पारंपरिक रूप से धोती, कुर्ता और रंग बिरंगी पगड़ी धारण करते हैं। यहाँ की पगड़ियाँ केवल वस्त्र नहीं बल्कि सम्मान और पहचान का प्रतीक मानी जाती हैं। महिलाएं घाघरा, कुर्ती और ओढ़नी पहनती हैं। गोटा पट्टी, कढ़ाई और शीशे के काम से सुसज्जित वस्त्र उनकी सुंदरता को और भी निखारते हैं। चांदी के आभूषणों का विशेष महत्व है। हाथों

0: में चूड़ियां, पैरों में पायल और गले में पारंपरिक हार ग्रामीण संस्कृति की पहचान है। शेखावाटी के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में लोक देवताओं का भी विशेष स्थान है। गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और भैरव जी जैसे लोक देवताओं की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। इन लोक देवताओं को जन रक्षक और लोक कल्याणकारी माना जाता है। गोगा जी के मेले और रामदेव जी के जागरण धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता के भी प्रतीक हैं। लोक देवताओं से जुड़ी कथाएं और भजन पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच प्रचलित हैं और समाज को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं।
1: सुनो जीरा मा पीर जी मारो।

ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਆਇਓ ਨੇ ਮਿਲੇ ਹਵੇ ਵਰਦਾਨ ਜੀ।

शेखावाटी का ग्रामीण जीवन सादगी, सहयोग और सामुदायिक भावना का अनुपम उदाहरण है। गांवों में आज भी चौपालें सामाजिक संवाद का केंद्र बनी हुई हैं। किसान कृषि और पशुपालन को अपनी आजीविका का मुख्य आधार मानते हैं। जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जोहड़, तालाब, कुएं और बावड़ियां यहाँ के लोगों की दूरदर्शिता को दर्शाती हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद शेखावाटी के लोगों ने श्रम, धैर्य और सामूहिक प्रयासों से जीवन को समृद्ध बनाया है। ग्रामीण मेलों, तीज त्योहारों और पारंपरिक आयोजनों में पूरा गांव एक परिवार की तरह सहभागी बनता है। यही सामाजिक एकजुटता शेखावाटी की सबसे बड़ी ताकत है।

श्रोताओं, यद्यपि आधुनिकता और शहरीकरण के प्रभाव से लोक संस्कृति के अनेक स्वरूप प्रभावित हो रहे हैं, फिर भी शेखावाटी के लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। लोक कलाकार, साहित्यकार, सामाजिक संस्थाएं और युवा पीढ़ी लोक गीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पर्यटन के बढ़ते महत्व ने भी शेखावाटी की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दी है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ की कला, संस्कृति और ग्रामीण जीवन को निकट से देखने आते हैं। शेखावाटी की लोक संस्कृति वास्तव में रेत, रंग और रिवायतों का अद्भुत संगम है। यहाँ के लोक गीतों में संवेदनाएं हैं, लोक नृत्यों में उत्साह है, वेशभूषा में रंगों की छटा है, लोक देवताओं में आस्था है और ग्रामीण जीवन में सामूहिकता की मिसाल है। यह संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि वर्तमान की जीवंत पहचान और भविष्य की अमूल्य विरासत भी है। शेखावाटी की यह सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करती रहेगी।

राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित शेखावाटी क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, रंग बिरंगी परंपराओं और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यहाँ का खान पान भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मरुस्थलीय जलवायु, सीमित जल संसाधन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ की भोजन संस्कृति को ऐसा स्वरूप दिया है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है। शेखावाटी का पारंपरिक भोजन स्थानीय कृषि, मौसम और जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ है। शेखावाटी में सदियों से ऐसा भोजन प्रचलित रहा है जो कम पानी में उगने वाली फसलों और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। बाजरा, मूंग, मोठ, चना, ग्वार और जौ यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न रहे हैं। ये अनाज न केवल पौष्टिक है बल्कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और मौसम के अनुरूप स्वास्थ्य बनाए रखने में भी सहायक है। शेखावाटी के भोजन में बाजरे की रोटी का विशेष स्थान है। बाजरा फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सर्दियों में बाजरे की रोटी के साथ लहसुन की चटनी, छाछ या घी का सेवन शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करता है।

श्रोताओं, आज जब दुनिया मोटे अनाजों यानी मिलेट्स की ओर लौट रही है, तब शेखावाटी की यह पारंपरिक खाद्य संस्कृति आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुरूप सिद्ध हो रही है। मूंग और मोठ की दाल यहाँ के भोजन का अभिन्न हिस्सा है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती हैं। दही से बनी कढ़ी भी यहाँ बड़े चाव से खाई जाती है, जो पाचन तंत्र के लिए लाभकारी मानी जाती है। गर्मी के मौसम में छाछ और मट्ठा शेखावाटी के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। ये शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं और निर्जलीकरण से भी बचाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन के साथ छाछ का सेवन आज भी सामान्य परंपरा है। शेखावाटी में उगने वाली केर, सांगरी, काचरी और ग्वारफली जैसी स्थानीय वनस्पतियां भोजन को विशेष स्वाद प्रदान करती हैं। इनमें अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये मरुस्थलीय परिस्थितियों में भी आसानी से उपलब्ध रहती हैं। श्रोताओं, पारंपरिक मिठाइयों की बात करें तो चूरमा, मालपुआ, रबड़ी, घेवर और मूंग दाल का हलवा शेखावाटी की लोकप्रिय मिठाइयां हैं। विशेष अवसरों और त्योहारों पर इनका विशेष महत्व होता है। हालांकि इनका सेवन संतुलित मात्रा में करना स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक भी माना जाता है। ग्रामीण शेखावाटी में कृषि और पशुपालन से जुड़े लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, इसीलिए पारंपरिक भोजन में पर्याप्त ऊर्जा देने वाले तत्व शामिल किए गए हैं। घी, दूध, दही और मोटे अनाजों का संतुलित उपयोग शरीर को लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। श्रोताओं, समय के साथ खान पान की आदतों में बदलाव आया है। फास्ट फूड, अधिक चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी समस्याएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगी हैं। ऐसे समय में शेखावाटी की पारंपरिक भोजन पद्धति हमें संतुलित और प्राकृतिक आहार का महत्व याद दिलाती है। शेखावाटी का खान पान केवल स्वाद का विषय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शैली का एक समृद्ध दर्शन है। बाजरे की रोटी, दालें, छाछ, स्थानीय सब्जियां और पारंपरिक व्यंजन इस क्षेत्र की जीवन शक्ति का आधार रहे हैं। आधुनिक समय में भी यदि इन पारंपरिक खाद्य आदतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाए तो स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। शेखावाटी की थाली में केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और स्वास्थ्य का सुंदर संगम परोसा जाता है। श्रोताओं, राजस्थान की धरती सदियों से वीरता, त्याग और बलिदान की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध रही है। इस वीर भूमि का एक महत्वपूर्ण अंचल है शेखावाटी, जिसने न केवल कला, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, बल्कि शौर्य और राष्ट्रभक्ति की ऐसी मिसालें भी प्रस्तुत की जिन पर संपूर्ण देश को गर्व है। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में फैला शेखावाटी क्षेत्र आज भी वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है।

आतो सुर्गासु भी पावन आतो सुर्गासु भी पावन जी परवारा तारो तन मन जीरो जत गावा में हरदम।

शेखावाटी का इतिहास संघर्ष और साहस की अनेक घटनाओं से भरा हुआ है। इस क्षेत्र का नाम शेखावत राजपूत शासकों के नाम पर पड़ा, जिन्होंने अपनी वीरता, कुशल नेतृत्व और स्वाभिमान के बल पर इस क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाई। यहाँ के किलों, दुर्गों और ऐतिहासिक स्मारकों में आज भी उस गौरवशाली अतीत की झलक दिखाई देती है। राजस्थान की अन्य रियासतों की तरह शेखावाटी के लोगों ने भी अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। वीरता यहाँ केवल राजाओं और योद्धाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामान्य जनजीवन का भी अभिन्न अंग बन गई। यदि भारत में सैनिक परंपरा वाले क्षेत्रों की

बात की जाए तो शेखावाटी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। देश की सेना में इस क्षेत्र के हजारों जवान और अधिकारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लगभग हर गांव में ऐसे परिवार मिल जाते हैं जिनकी कई पीढ़ियां सेना से जुड़ी रही हैं। कहा जाता है कि शेखावाटी के अनेक गांवों में सैनिक बनना केवल एक रोजगार नहीं बल्कि गौरव और परंपरा का विषय माना जाता है। बचपन से ही युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और साहस के संस्कार विकसित किए जाते हैं। शेखावाटी ने देश को अनेक वीर सैनिक दिए हैं जिन्होंने युद्ध भूमि में अदम्य साहस का परिचय दिया। इस क्षेत्र के अनेक सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

विशेष रूप से झुंझुनू जिले के सैनिकों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। यही कारण है कि झुंझुनू को कई बार भारत का सैनिक जिला भी कहा जाता है। यहाँ के सैनिकों ने स्वतंत्रता के बाद हुए लगभग सभी प्रमुख युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया है। सन 1999 के कारगिल युद्ध में शेखावाटी के अनेक वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके साहस और त्याग की कहानियां आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों के प्रति यहाँ के समाज में विशेष सम्मान का भाव दिखाई देता है। जब कोई जवान छुट्टी पर गांव लौटता है तो उसका स्वागत किसी नायक की तरह किया जाता है। वहीं शहीद सैनिकों की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ता है। शेखावाटी की शौर्य परंपरा केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यहाँ के लोक गीतों, लोक कथाओं और लोक नाट्यों में भी वीरता की झलक मिलती है। ग्रामीण महिलाएं अपने गीतों में वीर पुत्रों और रणबांकुरों का गुणगान करती हैं। लोक कथाओं में वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनाई जाती हैं, जिससे नई पीढ़ी को साहस, त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। गांवों के चौपालों पर आज भी युद्ध नायकों और शहीदों की कहानियां सुनाई जाती है। शेखावाटी की विशेषता यह है कि यहाँ वीरता और संस्कृति साथ साथ विकसित हुई है। एक और यहाँ भव्य हवेलियां, लोक कला और सांस्कृतिक धरोहरें हैं, तो दूसरी ओर देशभक्ति और बलिदान की गौरवशाली परंपरा भी है। यहाँ के लोक देवता गोगाजी और तेजाजी भी साहस, लोक कल्याण और रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन प्रसंग लोगों में निर्भयता और कर्तव्य निष्ठा का भाव जगाते हैं।

0: श्रोताओं, आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, तब शेखावाटी की शौर्य परंपरा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यह परंपरा सिखाती है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और कठिन परिस्थितियों में भी साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए। शेखावाटी के सैनिकों का जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने में भी है। शेखावाटी की शौर्य परंपरा राजस्थान के गौरवशाली विरासत का अमूल्य अध्याय है। यहाँ की मिट्टी में वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के संस्कार रचे बसे हैं। इस क्षेत्र ने देश को ऐसे रणबांकुरे दिए हैं जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम बनाया है। शेखावाटी की रेत केवल हवाओं के साथ नहीं उठती, यह अपने साथ वीरता, बलिदान और देशभक्ति की अनगिनत गाथाएं भी समेटे रहती हैं। श्रोताओं, रेत के कणों में इतिहास, रंगों में संस्कृति और रिवायतों में जीवन का दर्शन समेटे शेखावाटी वास्तव में राजस्थान की सांस्कृतिक आत्मा का एक उज्जवल स्वरूप है।
1: स्वागत में मेहमान के।

0: राजस्थान दर्शन। इस कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे शेखावटी की लोक संस्कृति और शौर्य परंपरा। ये आकाशवाणी चुरू का अंशदान था। आलेख और वाचन आरती सोनी का था, प्रस्तुति सहयोग मनीष भारद्वाज का और पेशकश विनोद कुमार हल्किया की थी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से किया गया। और लीजिए अब सुनिए।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का उलझन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार के गाए हुए नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं 16वां साल इस फिल्म।

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।

आपको हमारी पसंद लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाई। आपको हमारी पसंद लौट आई। देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके

आप तो हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए। आपको हमारी कसम लौट आई।

हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हम यूं न जाई, आपको हमारी कसम लौट आई।

आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए। आपको हमारी कसम लौट आई,

0: श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म 20 साल बाद से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जाल फिल्म से।
1: आहा

प्यासा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना हेमंत कुमार की ही आवाज में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोता आकाशवाणी जैसलमेर से सुन रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए खामोशी फिल्म का ये गीत।

0: रहे हम।
1: श्रोतों, ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति शर्त फिल्म का की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। अब से कुछ ही देर में यानी रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और

0: सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडिचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100